0: एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपचित उषण पर प्रधान हो तो काकचेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।

किसी का कैजुअल सवाल मुझे तो सोच में ही डाल दिया यार। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम। सिंपली आफरीन जुड़ गई है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और किसी ने मुझे ऐसे ही कैजुअली पूछा कि यार लाइफ में क्या एक्साइटिंग चल रहा है, बताओ जरा। एंड समटाइम्स आपका आंसर होता है नहीं, कुछ भी नहीं। एंड यू फील दैट ओ माई गॉड, लाइफ कितनी बोरिंग है हमारी। नो हॉलीडेज बुक्ड, कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है, नो ड्रामेटिक अचीवमेंट, बस आपका वही रूटीन, ऑफिस, घर, बच्चे, एवरीथिंग नॉर्मल लाइफ। बट ये मैं सोच रही थी कि हमने नॉर्मल को इतना बोरिंग वर्ड क्यों दे दिया है, है ना, क्यों बना दिया। अ डे वेयर एवरीवन यू लव इज ओके, एक ऐसा दिन जहाँ आप अपना काम कर रहे हो, एक ऐसा दिन जहाँ पर बिजी रहना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग है, यानी आपके पास काम है और आप फिट हो, आप हेल्दी हो वो काम करने के लिए। एक ऐसा दिन जहाँ पर आप अपने घर वालों के साथ में सुकून से एक डिनर कर पा रहे हो, विच शुड बी कंसिडर्ड एक्चुअली अ प्रीटी गुड डे रादर देन जस्ट अ बोरिंग नॉर्मल रूटीन डे, है ना। तो बस हर दिन को मेमोरेबल बनाने का प्रेशर होना ही नहीं चाहिए ना, कि हर आपकी जिंदगी का हर मोड़ एक्साइटिंग होना चाहिए। कभी कभार नॉर्मल इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। तो आज इस मंडे मॉर्निंग के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि मंडे को तो हमने इतना बदनाम करके रखा है, बोरिंग सा, डल सा, लेकिन कभी कभार डल, बोरिंग, नॉर्मल, ये सब भी अपने आप में ब्लेसिंग है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, और दिन की शुरुआत करते हुए दिस लवली मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग। जग लगाना आपका इंतजार कर रहा है और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virpa, la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Could I speak to Manish, please?
1: Speaking.
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से.
1: ओके
2: मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ.
2: वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
3: Yes, Bebo.
0: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
3: Yes.
0: Catch kya hai?
3: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
0: I still can't believe it. No catch.
3: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
4: Hi, this is Anuradha Podwal.
5: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
6: Hi, I am Kajiva Raman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
7: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6000-4369, an event by Rami Productions International.
8: Cut, cut.
9: Who that?
8: Jassi.
9: Jassi? Kaun si wali Jassi?
8: Jassi who has come, aunty ji?
9: Cut, cut. Who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1.
10: Mirchi.
0: It's hot.

0: What, Chunka?
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: देखो कैसा है ना, सेल का नाम सुनते ही कुछ लोगों का दिल नहीं उनका बैंक अकाउंट धड़कने लगता है। और फिर हम खरीद लेते हैं वो चीजें जिनकी उस वक्त पर तो बड़ी जरूरत लगती है, लेकिन आज वो या तो हमारे स्टोर रूम में है या कबर्ड के पीछे या फिर घर वालों के ताने का रीजन बनी हुई है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को। और आज क्या बोल दी पब्लिक, आपकी जिंदगी की सबसे यूजलेस परचेज क्या थी ये बताइए मुझे। वो चीज जो आपने बड़े एक्साइटमेंट में खरीद तो ली लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि भाई ये मैंने क्यों ली, इसकी मुझे क्या जरूरत थी। जैसे जिम का कोई इक्विपमेंट, फैंसी किचन गैजेट, सेल्फी स्टिक या ऑनलाइन शॉपिंग की मिडनाइट सेल का इमोशनल डैमेज। बताइए हमें 5000 1896 पर व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि हर घर में आई एम श्योर एक चीज ऐसी जरूर होती है जो पैसों से ज्यादा गिल्ट ऑक्यूपाई करती है। मेरे लिए वो चीज मेरे घर का ट्रेडमिल है, वो चीज मेरे घर का डायसन है। अगर आपको पता है डायसन हेयर ड्रायर एक होता है, वो मैंने लिया है और तकरीबन मेरे ख्याल से 4 या 5 बार इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे आता ही नहीं है यूज करने। सो बस आप मुझे बताइए आपकी ऐसी कौन सी चीज है यूजलेस परचेज जो आपको बहुत गिल्ट और रिग्रेट में डालती है। 5000 1896 मीनवाइल माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट। वो चीज मेरे घर का ट्रेडमिल है, वो चीज मेरे घर का डायसन है। अगर आपको पता है डायसन हेयर ड्रायर एक होता है, वो मैंने लिया है और तकरीबन मेरे ख्याल से 4 या 5 बार इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे आता ही नहीं है यूज करने। सो बस आप मुझे बताइए आपकी ऐसी कौन सी चीज है यूजलेस परचेज जो आपको बहुत गिल्ट और रिग्रेट में डालती है। 5000 1896

0: X9, an event by Rami Productions International.
1: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
2: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
4: 89.6
5: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
2: नचिकेता राय, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
1: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। खट खट,
3: कौन है?
0: इशांत।
3: इशांत कौन?
0: इशांत गदाधारी भीम इशांत।
3: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: वेल अरिजीत सिंह और सचिन जिगर की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आफरीन आपके साथ। लेकिन मुझे पता है कि अगले कुछ दिनों में अच्छा ही होगा, और इसी उम्मीद के साथ हर रोज कहते हैं मुझे कुछ लोग जो मिलते हैं, यार आफरीन तुम तो हर रोज कहती हो आज का मौसम अच्छा होगा या आने वाले दिन में अच्छा होगा, ये कब होगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल वेदर आज ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। काफी दिनों के बाद ये 30s के आंकड़े में आ गया है। मैं देखो मैक्सिमम कहती थी 40, 42, 43, तो ये थोड़ा सा वी कैन टेक इट एज अ गुड साइन। मिनिमम जो है वो 30 डिग्रीज तक रहेगा। मीनवाइल ह्यूमिडिटी जो है यही तो बहुत हैरान कर रही है हमें दिन के वक्त, स्पेशली अभी ह्यूमिडिटी इज एट 72% और हवाएं इट्स अ जोक, देयर इज नो हवा एट ऑल, 0 किलोमीटर पर है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे जब अच्छे खासा वेदर भी 25-20s में आ जाएगा और फिर हवाएं ठंडी ठंडी सी चलेगी और मैं जाऊंगी दोहा पोर्ट, मीना पोर्ट पर, वहां बैठकर खुला समंदर, खुला आसमान है, ओह माय गॉड, वेटिंग फॉर दोस डेज। मीनवाइल चलते रियलिटी में आते हैं, आप निकलिए ऑफिस की तरफ और हम हैं यहाँ पर आपको गाने सुनाने के लिए फरहान अख्तर की आवाज में राइट हियर रॉक ऑन का ये गाना, एंड एंजॉय दिस ट्रैक माइक से दिल तक आफरीन के साथ। इट्स हॉट।

खुशहाल अर्जुन के लिए देयर आर सो मेनी सिंगर्स अदर्स, लेकिन मुझे सिर्फ श्रेया घोषाल की आवाज इसमें समझ में आई. लेकिन यार इतनी खूबसूरत बात है श्रेया घोषाल की आवाज में कि जब भी वो किसी और सिंगर के साथ कोई और लैंग्वेज में कोलैबोरेट करती है ना, शी ब्रिंग्स आउट एक अलग ही मैजिक, एक अलग ही जान आ जाती है गाने में. वो अपनी इंडिविजुअलिटी जो होती है वो बिल्कुल शाइन करती है उनकी. एंड दैट्स श्रेया घोषाल. विद दिस अगले गाने की तरफ मैं सीधा बढ़ रही हूँ, क्योंकि 90s की तरफ अब ले जा रही हूँ आपको, वो भी कुमार सानू के एरा में. एंड भाई जान यानी यार हैंडसम हंग सलमान खान का ये गाना एंजॉय इट राइट ऑन मिर्ची. इस गाने के उस पार मिलती हूँ मैं यानी आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

कुमार सानू की आवाज में एक तकड़ा 90s का नॉस्टैल्जिया आपको दिया मैंने राइट हियर ऑन मिर्ची. और यही नॉस्टैल्जिया आपको एक्चुअली में महसूस होगा यहाँ पर जब आप ये इवेंट में जाओगे. यानी मैं बात कर रही हूँ 30th October की. ये इवेंट बॉलीवुड मेगा नाइट है, म्यूजिकल नाइट, जहाँ पर अनुराधा पौडवाल जी आने वाली हैं, विनोद राठौड़ आने वाले हैं, जूनियर कुमार सानू भी रहेंगे. सो यू कैन जस्ट इमेजिन कितने अच्छे नगमे हैं इनके, इतने खूबसूरत गाने हैं. और मजे की बात ये है कि ये सब गाने ना आपको याद है, पूरे के पूरे याद है. अब आप बोलोगे कि यार कितने साल हो गए इसे सुनकर in 25-30 years probably, but still when you listen to these tracks I'm sure aap saath saath gungunaoge. So ye ho raha hai SY Lady Sports Hall mein. Yahan par aap ja sakte ho, tickets le sakte ho, Q tickets, platinum list, you name it, har ticketing platform par hai, S City. And dekhiye 90s se rishta hamara bahut gehra hai. And if you feel that ki aapko yaar ek bar to aana hai, maze karna hai, ek you just have to ek time machine mein jaakar bilkul purane zamane mein jana hai, then this is it. तो इसीलिए कह रही हूँ अगला गाना जो है विनोद राठौड़ की आवाज में जो मैं आपको सुना रही हूँ यहाँ पर, जो आपको बिल्कुल याद दिलाएगा कि यार हाँ कितने मजे के गाने हुआ करते थे, है ना. सो बाजीगर मूवी का ये गाना विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज में राइटर ऑन मिर्ची.

0: This song is driven by Unipart, your one-step destination for quality auto parts, trusted brands and unbeatable value. Unipart, a part of your life.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Burka, burka. Nafis bala burka. Mirchi burka.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103, राइट?
2: हाँ।
3: वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000।
2: हाँ।
3: वन सेकेंड सर, आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो।
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं।
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला? किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी न किसी को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है।
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे भी निकाले।
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है।
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं। मुझे नहीं पता आप
2: ठीक बोल रहे हो ना, वहीं
3: जाके आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए। सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी। और बैंक हमारा मिर्ची का है, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं, आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
3: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दी आपने।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
7: हाय, दिस इज अनुराधा पौडवाल।
8: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
9: Hi, I am Kajiva Raman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
10: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 PM onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369 and event by Rami Productions International.
11: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509-389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
12: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
11: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
12: This initiative is driven by GWM.
13: Back to school means more journeys, more traffic and more reasons to drive with peace of mind.
14: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance, plus flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
13: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
15: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
16: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है,
17: कैसे रुक सकता है?
18: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
19: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन है आपके साथ राइट हियर। और वैसे वीकेंड आने के लिए और कुछ दिन बाकी है, यानी 2 दिन और बाकी है, लेकिन आफरीन जो है अभी से प्लान्स बनाना शुरू कर रही है। सो यस, अब अगर वीकेंड की बात करें तो पेरेंट्स के लिए हमेशा सवाल रहता है बच्चों का कि कहाँ जाना है, क्या करेंगे एंड ऑल दीज थिंग्स। और उन्हें ऑफकोर्स एंटरटेन रखना है, उनके साथ वक्त गुजारना है। सो दिस वीकेंड लेट मी टेल यू, अगर फ्राइडे को कहीं जाने का प्लान है और फैमिली के साथ पूरा का पूरा आपने ये प्लान बनाना है तो 16th of October फ्राइडे को 974 बीच पर फेस्टिवल ऑफ वेकेशन एंड फन ऑर्गेनाइज हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी की तरफ से है ये फैमिली फ्रेंडली इवेंट होने वाला है। दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक बच्चों के लिए आर्ट्स है, क्राफ्ट है, इन्फ्लेटेबल्स है, बबल शो है, फेस पेंटिंग जैसी और कई सारी एक्टिविटीज होने वाली है। अब टिकट प्राइजेस भी नोट कर लीजिए, 6 ईयर्स से छोटे बच्चे और पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए द एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री। अंडर 14 ईयर्स के चिल्ड्रन जो है उनके लिए 15 रियाल्स है और अडल्ट के लिए 35 रियाल्स है। सो इसी के साथ दिस इज अ प्लेस 974 बीच फ्राइडे का एक ऑप्शन आपको बता दिया है। आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में और भी ज्यादा चीजें बताते जाऊंगी मैं यहाँ पर कि आप क्या कर सकते हो वीकेंड पर। मीनवाइल गानों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सुखी पाजी यानी सुखविंदर सिंह और विशाल ददलानी की आवाज में ढंटन एंड मूड से आपके दिन की शुरुआत कराती हूँ मैं। yes. Well, शाहिद कपूर पर फीचर करता हुआ ये गाना फ्रॉम द मूवी कमीने। अरे यार मूवी का नाम है।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, self trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

0: right here on Mirchi. Well, Afreen to hai, lekin aap jud gaye hain mere saath on the show Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
0: Aur isi ke saath aapko aur mera yahan par conversation karne ka waqt aa gaya hai. Yes, you've got it right. Yahan game khelne ka waqt aa gaya hai jahan par main aapko kuch scene sunaungi and you have to guess like always ki Afreen aakhir kaun si scene ki baat kar rahi hai yahan par, kaun si movie ki baat kar rahi hai. So, jise main kehti hu lights camera scene test.
1: Lights, camera, scene test.
2: लगान भरत है और फिरंगियों की गंदी हथेली पे धर देते हैं। तू बोल माँ, धरती की छाती चीर के बीच कौन बोए? हम बोए, फिर सीजे कौन है? हम ही, फिर लगान उनकी गांठ काहे बांध दे?
0: All right, I think so. This has got quite easy. लेकिन मैंने सोचा कि ट्यूसडे का दिन है, थोड़ा सा इजी पीजी रख लेते हैं. 5000 1896 इज माई नंबर यार. यहाँ पर मैसेजेस आने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं एडिट करके ना थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाती हूँ थोड़ी देर में. बट यहाँ पर आंसर्स जो आ गए हैं, आई एम एक्सेप्टिंग दोज आंसर्स. और जो लोगों को पता है और जनरली कभी करते नहीं है, चलो आप लोग आज मैसेज कर लो, वॉइस मैसेज करो, मजा आ जाएगा. 5000 1896 नंबर बता दिया मैंने. तब तक के लिए अक्षत की आवाज में अगला गाना एंजॉय करो. तब तक के लिए मैं यहाँ पर रिप्लाई करती हूँ आपके मैसेजेस को.
3: कैसे तू गुनगुनाए मुस्कुराए
0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: बातों पे

0: मिलता है अखिल सचदेव की आवाज में मनशील गुजराल का साथ, राइट ऑन मिर्ची जुड़ गई है आपके साथ। और सवाल जवाब का सिलसिला था यहाँ पर उन लोगों के लिए जो अक्सर सोचते हैं हम मैसेज तो कर देंगे लेकिन यार आंसर नहीं पता होता है कभी, या फिर बस बहाने ढूंढते हैं कि नहीं यार बाद में कब करेंगे। तो फिर उनके लिए मैंने आज इतना इजी भी इजी सवाल पूछा कि आप ना जवाब देने पर बिल्कुल मजबूर ही हो जाओ। वेल, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। मैंने सीन सुनाया था, आपने गेस करना था कि बॉस ये सीन आखिर है कौन सा। और इस सीन के बारे में ना मजेदार सी बातें भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि दिस इज अ वेरी आइकॉनिक मूवी यार, ऐसी मूवी जो इंडिया का नाम ग्लोबल लेवल तक लेकर चली गई थी। नाउ आई थिंक सो यू कैन गेट इट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन चलिए मैं आपको यहां पर डायलॉग सुना ही देती हूं।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट सीन टेस्ट।
2: और फिरंगियों की गंदी हथेली पे धर देते हैं। तू बोल मां, धरती की छाती चीर के बीच कौन बोए?
0: All right, this should be good enough, यार आवाज पता है और कॉन्टेक्स्ट पता चल रहा है कौन सी मूवी है क्या है। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जहां पर एक मैसेज में यहां सुनाना जरूर चाहूंगी।
3: गुड मॉर्निंग,
0: वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी,
3: मूवी ऑफ कोर्स इज लगान।
0: हाँ जी बिल्कुल,
3: नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर एज वेल, डायरेक्टेड बाय आशुतोष ग्वारिकर, म्यूजिक बाय एआर रहमान, लिरिक बाय जावेद अख्तर।
0: क्या बात है, सब कुछ बता दिया।
3: प्रोटैगनिस्ट वर आमिर खान, ग्रेसी सिंह एंड मेनी अदर्स।
0: थैंक यू सो मच, दैट इज द राइट आंसर। बहुत सारे लोगों ने ऑब्वियसली यहाँ पर सही जवाब दिया है, जैसे त्रिशा का मैसेज आया है, आफ्ताब का मैसेज है, पप्पू शाफी, कुलवंत सिंह, मोहम्मद यूसुफ खान, देन आई हैव रवि, देन आई हैव हुज दिस नाम नहीं लिखते और फिर मुझे मुश्किल हो जाती है इधर बताने में। वेल, और मैसेज आए यहाँ पर किरण करेशा का भी, दैट दिस मूवी नेम इज लगान। इंडीड लगान की एक मजे की बात बताऊँ मैं आपको, आमिर खान का ये जहाँ किरदार था, ये गांव में बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ा है, फसलें पूरी खराब हो रही है, लेकिन उसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी देख लीजिए कि आमिर खान क्लीन शेवन नजर आ रहे हैं। सो आमिर खान को बहुत दिक्कत थी इसमें, ही बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, के भाई आशुतोष द डायरेक्टर ऑफ द मूवी ऑफकोर्स, कि यार आशुतोष क्या सोचकर तुम बोल रहे हो कि मुझे क्लीन शेवन लुक चाहिए, कि मतलब ये बंदा गाँव में पानी नहीं है और हर रोज सुबह में शेव कर रहा है। सो ही वॉज बेंट कि नहीं यार नहीं, कुछ करो, कुछ दाढ़ी दिखाओ, कुछ करो, दिस डजंट रियली मैच द सीन। तो आशुतोष वॉज लाइक नो आई डोंट केयर, ठीक है लॉजिक को रखो साइड में, कभी कभार ऑफकोर्स, कभी कभार नहीं, बहुत बार हमारे बॉलीवुड मूवीज में ऐसा होता है जहाँ लॉजिक साइड में रहती है। आई जस्ट वॉन्ट टू लुक गुड, सो दैट्स द रीजन दिस लुक आमिर खान हैड इट। एंड ऑनेस्टली ये सॉन्ग के साथ ना मैं भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ कहीं ना कहीं, गिर गिराए बरसा, हमारे कतर में भी राइट ना बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। आई लव दिस सॉन्ग फॉर सो मेनी सिंगर्स इन इट, एंजॉय इट ऑन मिर्ची सॉन्ग।

0: Well, that is Romy और श्रेया घोषाल की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना Right Here on Mirchi. हाँ जी, और हर रोज की तरह फटाफट से आपको ले चलती हूँ गोल्ड अपडेट की तरफ.
1: गोल्ड अपडेट
0: जो कुछ ये कहती है, दर 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 570 कतरी रियाल, 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2,666 कतरी रियाल, वेरस 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5,264 कतरी रियाल, 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16,270, वेरस 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 16,399 कतरी रियाल. ये थे आज के गोल्ड अपडेट. अगला गाना बनी रियाल की आवाज में Chai Ulfat from the movie Two States on Mirchi. It's hot.
2: Stay ahead of today's gold rates with Alfardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.

0: Mix.
1: It's hot.
0: Milchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virgua, la burga. Milchi, burga.
3: Hello.
4: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल?
4: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है, इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
4: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
4: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
4: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
4: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
4: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
4: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
4: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
4: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है
5: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
3: कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
8: GWM के मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती एंड फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
9: 89.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्तवाला गौरव, और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में, और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं। यू गाइस एंजॉयड इट?
10: इट वाज ग्रेट फन। थैंक यू मिर्ची, थैंक यू GWM,
11: थैंक यू मिर्ची फॉर द GWM रिचार्ज। इट वाज रियली फन, एस्पेशली द मैजिक शो
12: एंड शो गौरव अफीन, थैंक यू वेरी मच।
13: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
14: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
15: Yes, Bebo.
14: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
15: Yes.
14: Catch kya hai?
15: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
14: I still can't believe it. No catch.
15: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
16: It's back. It's back. LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya js.qa. Hurry! Offer valid till 19th October.

0: 않아 애쓰나요 대거처럼
1: खटखट
2: हु देयर
1: बनता
2: बनता हु
1: अरे बनता तो बहुत हूं मैं अपने आप को
2: खटखट हु देयर
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

वो कहते हैं ना कुछ आवाजों में कशिश होती है, दैट्स व्हाट उदित नारायण की आवाज में है एंड ऑफ कोर्स अलका याग्निक की आवाज में भी। इस गाने की मेलोडी और इस गाने के साथ में इतनी अच्छी खूबसूरत लग रही है कि आई जस्ट गॉट लॉस्ट इनटू दिस ट्रैक फॉर सम टाइम। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और आज के एक्सचेंज रेट लेकर आई हूँ मैं, जो कुछ ज्यादा ही सरप्राइजिंग लग रहे हैं मुझे। वेल, कल तक जो एक्सचेंज रेट में इंडिया का बता रही थी के 26.49 की तरफ चल रहा है, आज एक्सचेंज रेट एक अथी रियाल के बदले मिल रहा है 26.08 डायरेक्टली इतने पर आ गया है। उसके अलावा पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 76.11 पर है, बांग्लादेशी टाका वेर एज इट इज 33.78 एक अथी रियाल के बदले, श्रीलंकन रुपीज आपको मिल रहे हैं 90.82 वेर एज नेपाली रुपीज इज एट 41.90। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर बेचे पैसे धीरो सारी खुशियां और खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला एज आई सी 89.6 मिर्ची 1 पर माइक से दिल तक आफ्टरनून के साथ इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: What a beautiful गाना है यार। मतलब सच कहती हूँ, मैं कभी कभार जो है 90s के एरा से बाहर नहीं निकल पाती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सॉन्ग्स। ऑफ कोर्स हमारे खूबसूरत यादें भी हैं जो 90s, 80s, 2000 के एरा से जुड़ी हुई होती हैं, बट दीज सॉन्ग्स ऑलवेज टेक अस बैक। कुमार सानू की आवाज़ में ये गाना वन ऑफ माई फेवरेट्स। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफ्टरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड इट्स टाइम के आफ्टरीन अपना पिटारा खोले। मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। और आज मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से दो तीन चार स्टार्स के नाम निकले हैं, ठीक है, जहां मैं मूवी के स्टार कास्ट का नाम बताने वाली हूँ। और मजे की बात यह है कि मैं ना पूरा स्टार कास्ट का नाम नहीं बता रही हूँ, आधा अधूरा सा ही बताऊंगी ताकि थोड़ा सा सोचे ना आप, ठीक है। तो आज मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से ये चार स्टार्स के नाम हैं, जहाँ पहले है इजी, ठीक है, अक्षय कुमार, ठीक है। अब दूसरी है विद्या बालन। नाउ यू आर गेटिंग मेनी नेम्स इन योर हेड, लेकिन लेट मी गो टू द नेक्स्ट नेम। तीसरा नाम है यहाँ असरानी साहब का, याद है असरानी? हाँ जी, वही है। देन आई हैव वन मोर ऑन माई लिस्ट, बट देर आर मैनी, लेट मी टेल यू यहाँ पे। और तीसरा नाम मैं बताना चाहूंगी राजपाल यादव का। चौथा नाम, तो बताइए वो कौन सी मूवी है जिसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, असरानी, राजपाल यादव, ये सारे लोग हैं। 5000 1896। हालांकि मैं जानबूझ कर यहाँ पर तीन चार स्टार्स के नाम नहीं बता रही हूँ, थोड़ा कि आप सोच में पड़ जाए। 5000 1896 कौन सी मूवी है बताइए, जिसमें अक्षय कुमार, विद्या बालन, असरानी, राजपाल यादव आपको नजर आते हैं एक साथ। तब तक के लिए शाल वाली घोलगड़ी की आवाज में परेशान ना हो, गैस करना है गैस भी कर लो, बट गाना एंजॉय कर लीजिए मिर्ची के साथ।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12th से 14th अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
5: GWM के मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती एंड फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
6: 89.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्वाला गौरव और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं। यू गाइस एंजॉयड इट?
7: It was great fun. Thank you, Mirchi. Thank you, GWM.
8: Thank you, Mirchi, for the GWM recharge. It was really fun, especially the magic show.
9: Anshu, Gaurav, Afin, thank you very much.
10: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also, enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
11: It's back! LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
12: Kuch kuch hota hai Anjali. Tum nahi samjhoge.
13: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
14: बहुत कुछ होगा।
15: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
16: 89.6
17: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हाय आशा ताई की आवाज, व्हाट मैजिकल आवाज ना. मतलब हर एक सिंगर, हर एक एक्ट्रेस, आई मीन कोई भी एज की हो, वेल द फीमेल इन दिस सॉन्ग जो स्नेहा उलाल थी, वो कितनी छोटी थी, याद है ना आपको, और उनकी आवाज के साथ भी आशा ताई की आवाज मैच हो रही थी. मतलब दैट वाज द मैजिक ऑफ आशा ताई, आई वुड से. विद दिस आफरीन है आपके साथ, बातों का सिलसिला तो चलते ही रहता है मेरा. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. और बातों के सिलसिले के साथ में यहाँ पर जवाबों का सिलसिला भी काफी ज्यादा चल रहा है. वेल, आज काफी इजी सवाल पूछा क्या मैंने? मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप तो बड़े स्मार्ट निकले. मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से आज 3-4 स्टार्स के नाम निकले थे मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स, और आफरीन ने ना जानबूझकर पूरे स्टार्स के नाम नहीं बताए मूवी के, थोड़े से रखे अपने पास बचाकर ताकि कंफ्यूज रहे आप. वेल, कौन सी मूवी है जिसमें अक्षय कुमार है, विद्या बालन है, असरानी साहब है एंड राजपाल यादव है. सो लेट्स स्ट्रेट अवे हेड टू आर आंसर्स. बहुत सारे आंसर्स आए हैं. हाँ जी, आई एम गुड विवेक. ओके,
1: और फिर आफरीन जी,
0: गुड मॉर्निंग. हाँ जी, बिल्कुल ठीक. ओके,
1: द नेम ऑफ द मूवी इज भूल भुलैया.
0: बिल्कुल सही,
1: इट्स अ रीमेक ऑफ अ मलयालम मूवी.
0: अच्छा, ओके, यू आर राइट.
1: वाज रियली फनी एंड गुड इन द मूवी. मूवी वाज रियली गुड. हैव अ गुड डे.
0: यू टू हैव अ ग्रेट डे. यस,
2: हाय आफरीन, दिस इज यर राकेश.
0: ऑलराइट,
2: दिस मूवी हैव भूल भुलैया.
0: ओके.
3: Hiya, the name of the movie is Bhool Bhulaiya.
0: All right.
4: Good morning, Afreen.
0: Good morning. Prinsin.
4: The movie name is Bhool Bhulaiya.
0: That is the right answer. That is
4: Thank
0: the right
4: you,
0: answer.
4: Have a lovely day.
0: You do have a great day. बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया. यहाँ पर संजीवा का मैसेज आया है. Then I have your मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है. मुआज़िम ठाकुर, ताहिर का मैसेज है. आफ्ताब. Then I have your who's this रुपेश का मैसेज है. Then I also have सलमान, सफा, और किसी का नाम मिस कर दिया मैंने. हेमंत, सोनी, और कोई है बचा है निशात. एंड यस, अगर कोई बचा है तो फिर आपने अपना नाम लिखा नहीं होगा प्रॉबेबली. सो भूल भुलैया इट इज अक्षय कुमार, विद्या बालन, शाइनी आहूजा, परेश रावल, अमीषा पटेल, बहुत सारे लोग थे. जैसे मैंने बताया ना कि मैंने आधे ही नाम बताए थे. एंड भूल भुलैया का ये गाना ना बजाओ तो कैसे हो सकता है. केके की आवाज में ये गाना, सच अ ब्यूटिफुल ट्रैक इट इज. एंजॉय दिस राइट हियर माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची इज हॉट.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, that was Madhuman Dimakchi ki awaaz mein Dhurandhar ka ye gaana right here on Mirchi. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप इनका साथ है. और एक बात बताइए मुझे कि जब हम किसी रेजिडेंशियल एरिया में घर चूज करते हैं तो सिर्फ घर कितना बड़ा है या कितना ब्यूटीफुल है ये नहीं देखते हैं ना, हम ये भी देखते हैं कि रोड्स कैसे हैं, पार्किंग फैसिलिटी है या नहीं, बच्चों के स्कूल तक पहुँचना कितना कन्वीनियंट है. ये ना छोटी छोटी फैसिलिटीज़ ही हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस लाती है, कन्वीनियंस लाती है. और वेल इसी से रिलेटेड कतर के इसगावा और अल्तुमैद एरियाज के रेजिडेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है. कतर की पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी यानी अशगल ने यहाँ रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सेकंड फेज का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने की अनाउंसमेंट की है. और इस प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे अप्रॉक्सिमेटली 418 मिलियन कतर रियाल्स. अब इसमें एग्जैक्टली क्या डेवलप होने वाला है? अराउंड 23 किलोमीटर की रोड्स, 30 किलोमीटर की पेडेस्ट्रियन और साइकिलिंग पाथ और 2730 पार्किंग स्पेसेस बनाए जाएंगे. वाओ. इसके अलावा 589 स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल होंगी, रोड सेफ्टी साइंस और मार्किंग इंप्रूव होने वाली है. और सिर्फ रोड्स ही नहीं, रेन वाटर ड्रेनेज और सीवेज नेटवर्क पर भी काम होगा. ग्रीन एरियाज के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज भी डेवलप की जाएगी. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस प्रोजेक्ट से अप्रोक्सीमेटली 771 रेसिडेंशियल और अदर प्लॉट्स, स्कूल्स, कमर्शियल सेंटर्स और अदर पब्लिक फैसिलिटीज को बेनिफिट मिलने वाला है. सो वेल, अगर आप इस एरिया में रहते हैं और कंस्ट्रक्शन को लेकर ये यूजफुल डिटेल आपके लिए जरूर है. वेल, एरिया का नाम मैंने बताया था यहाँ पर जो है इसगावा और अल्तुमैद एरिया. मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirci.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Gran bala. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirci, burga.
2: हेलो,
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे
3: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं,
2: है?
3: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
2: तो
3: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
2: पूरी
3: नहीं नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
2: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
3: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
2: ये कॉपी मुझे भी भेजना
3: राज जी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। अब थोड़ा सा वो कॉन्टेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: Back to school means more journeys, more traffic and more reasons to drive with peace of mind.
8: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance, plus flexible payments and 7% cash back.
9: Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
7: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
10: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
11: Yes, Bebo.
10: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
11: Yes.
10: Catch kya hai?
11: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
10: I still can't believe it. No catch.
11: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
12: It's back! It's back! LG and Jumbo की मेगा प्रमोशन। LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs और audio products पर assured gift vouchers. Plus up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles और Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores या JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
13: Cut cut.
14: Who that?
13: Zahir.
14: Zahir. Zahir who?
13: Zahir सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं.
14: Cut cut. Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: वेल बॉलीवुड में एक ट्रेंड तो आपने नोटिस किया है, हर दूसरी फिल्म का ना सीक्वल बन रहा है, लेकिन अब जिस फिल्म की सीक्वल की खबर आई है ना, वो थोड़ी सरप्राइजिंग है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन है आपके साथ दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और
0: मिर्ची स्पॉट बॉय बॉलीवुड की अंदर की खबर, आफरीन मैडम पता है क्या?
1: मुझे तो पता है, लेकिन क्या आपको याद है विद्या बालन की फिल्म द डर्टी पिक्चर 2011 में रिलीज हुई थी और विद्या बालन की परफॉर्मेंस ने काफी हेडलाइंस बनाई थी। वेल अब प्रोड्यूसर एकता कपूर ने कंफर्म कर दिया है कि द डर्टी पिक्चर 2 बनने वाली है। वेल एकता का कहना यह है कि इस फिल्म के लिए एक कहानी है जो वो बताना चाहती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरिजिनल फिल्म को विद्या बालन ने अपनी परफॉर्मेंस से इतना मेमोरेबल बना दिया था कि सीक्वल के लिए एक्सपेक्टेशंस नेचुरली अब हाई होंगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब विद्या बालन सीक्वल में वापस आएंगी या इस बार किस नई एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा। फिलहाल लीड एक्ट्रेस को लेकर ऑफिशियल कन्फर्मेशन सामने नहीं आई है, बट मुझे एक और चीज की क्यूरियोसिटी यह है, क्या सीक्वल ओरिजिनल स्टोरी से कनेक्टेड होगी या फिर कोई अनदर कोई एक अलग ही एक्ट्रेस के बारे में द डर्टी पिक्चर 2 आने वाली है। वेल ये तो वक्त ही बताएगा और यहाँ पर मिर्ची मॉर्निंग्स पर अंदर की खबर में आफरीन जरूर बताएगी। मीनवाइल आप बने रहिएगा मेरे साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अर्शद वार से आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
2: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर पिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
3: उनकी दो एक सीरीज एक फिल्म, मैं हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
1: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डाल। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कई बार ऐसा लगता है ना आपको कि जिंदगी को देखकर यार मैंने तो कुछ और ही सोच रखा था और कुछ और ही हो रहा है। अब ये चीज ना बहुत सारी चीजों से जुड़ी हो सकती है, करियर से जुड़ी हो सकती है, या फिर कोई और एक्सपेक्टेशंस आपने जिंदगी से बना रखी थी और फिर कुछ और ही होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम प्लानिंग करना फिर भी नहीं छोड़ते हैं, है ना। कल क्या करना है, अगले साल कहाँ होना है, 5 साल बाद लाइफ कैसी होगी। लेकिन इसी प्लानिंग और रियलिटी के बीच की कहानी को बड़े ही खूबसूरत अल्फाजों में ये शायरी लेकर आई है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो अर्ज किया है कि हसरतें कुछ और हैं, वक्त का इल्जाम कुछ और है। और फरमाइए कि हसरतें कुछ और हैं, वक्त का इल्जाम कुछ और है। कौन जी सका है जिंदगी अपने मुताबिक, कौन जी सका है जिंदगी अपने मुताबिक। दिल चाहता कुछ और है, होता कुछ और है।

क्या बात है. और मुझे तो स्पेशली वो लास्ट लाइन बड़ी रिलेटेबल लग रही है कि यार दिल चाहता कुछ और होता कुछ और है ना. कभी कभी जो हमने सोचा नहीं होता है वो भी जिंदगी कहानी का एक खूबसूरत हिस्सा बन जाता है. और शायद इसीलिए लाइफ की स्क्रिप्ट हम जितनी भी लिख ले, फाइनल एडिटिंग तो जिंदगी कुछ खुद ही कर लेती है. माइक से दिल तक आफ्लीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

देखो डॉक्टर्स ना प्रिस्क्राइब करते हैं ये दवा खाओ सेहत के लिए अच्छा है, मैं एज एन आरजे प्रिस्क्राइब करती हूँ कि भाई ये गाना ना हफ्ते में एक बार तो आपने सुनना ही चाहिए, है ना? What could be beautiful than this? Love you, जिंदगी. I mean, जिंदगी किस तरह से भी चल रही हो, कोई भी मोड पर हो आप, लेकिन love you, जिंदगी कहना ये इसलिए essential होता है कि आप शुक्र करते हो जो आपके पास चीजें हैं, जो अनदेखी होती है, जो हम रियलाइज करते ही नहीं है. और अक्सर हम हमारे ऊपर वाले लोगों से चीजें देखते हैं कि कंपेयर करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह से वो चल रही है उनकी जिंदगी. बट वेन वी लुक डाउन, दैट्स वेन वी रियलाइज एंड दैट्स वेन इट इज दैट फीलिंग कि हाँ यार, लव योर जिंदगी. बस इसीलिए ये गाना ना आफरीन, आरजे आफरीन आपको प्रिस्क्राइब करती है कि हफ्ते में एक बार आप ये सुन ही लीजिए. चलिए मैं ही आपको सुना दिया करूंगी यहाँ पर. मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन है. खूब सारे गप्पे गप्पे गप्पे गप्पे गप्पे हुए और बहुत सारे गाने हुए, अच्छे प्यारे गाने हुए. अब जाने का वक्त आ गया है, लेती हूँ अलविदा. कल मिलूंगी फिर से, सेम टाइम सेम शो. और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है आपको आफरीन के पास आज वीकेंड वाली एनर्जी लग रही है? अरे वाह, अच्छी बात है ना. तो बस यही एनर्जी आपको एयरवेव्स के थ्रू मैं भेज रही हूँ और आपका भी दिन बिल्कुल एनर्जेटिक इसी तरह से जाए. और सचिन टंडन की आवाज में ये गाना सुनाते जा रही हूँ तो इजाजत है. एंजॉय दिस ट्रैक. माइक से दिल तक आप शीन के साथ अनवर चीज हॉट.

वेल अजनबी क्यों यार, चलिए किसी ऐसे से ही पूछ लेते हैं जो आपके जान पहचान का है। भाई साहब, मेरा दिल तो बेचैन आज इसलिए है क्योंकि इसके पीछे एक खास वजह है। क्या आपके दिल की बेचैनी के पीछे भी ऐसी कोई वजह है? वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। अगर आज की तारीख की मैं बात करूँ तो हम पहुँच चुके हैं 13th of October एंड आज का दिन है ट्यूजडे। वेल फाइनली, अगर मैं पूरे के पूरे दिनों की बात करूँ, इस साल की बात करूँ, यार पता ही नहीं चला कि वक्त का ये चक्का जो है हमें किस तरह अक्टूबर के महीने तक ले आया। अक्टूबर का आधा महीना जो है हमारी जिंदगी में पूरा होने जा रहा है। एंड इसके साथ ही अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी जर्नी की बात करूं, यार अक्टूबर ही वो मंथ था जब फाइनली मैंने मिर्ची में अपना ये सफ़र शुरू किया था। आप सबसे मेरी मुलाकातें होने लगी, आपसे बातें होने लगी। एंड देखिए, देखते देखते कुल मिलाकर अगर ज़िंदगी के इस पड़ाव को महसूस करूं तो 5 साल पूरे हो चुके हैं। तभी तो मैंने कहा कि मेरे दिल की बेचैनी की वजह जो है आज बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। सो टू ऑल यू लवली पीपल जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने इतने सालों तक मुझे सुना, एंड यार आपकी वजह से जो ये मेरा मिर्ची का सफ़र जो है ना हमेशा अच्छा चलते रहा, यार दिल से आपको थैंक यू। एंड अपने लिए नहीं है, इस वक्त ना मैं आपके लिए ज़ोरदार तालियां बजाना चाहती हूँ। द जर्नी हैज़ बिन रियली एक्साइटिंग। 4 सालों तक मॉर्निंग में मैं आपके साथ जुड़ी रही, उसके बाद मिड मॉर्निंग में ये कमान आपके साथ मैं संभालती आ रही हूँ। मज़ा आता है, दिल से बड़ी खुशी होती है यार। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वॉर्म्थ। एंड इस वक्त अगर आप मुझे सुन रहे हैं एंड अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आपको ये सफ़र मेरे साथ बहुत अच्छा लग रहा है, हसीन खूबसूरत लग रहा है, तो यार एक गुड मॉर्निंग का मैसेज, हाई हेलो का मैसेज तो भेज दो या मुझे कंग्रेचुलेट ही कर दो। 5 साल, इट्स अ बिग थिंग। 5000186, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हुए फिर से दिल से एक नई शुरुआत करते हुए अरिजीत सिंह की आवाज में अगला प्यारा सा गाना मैं आप तक पहुंचाती हूँ। यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Milci. Iskrabana, uskrabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Navietva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Could I speak to Manish, please?
1: Speaking.
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
1: ओके
2: मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को। मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में। यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके।
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा
2: हूँ। वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था। तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे, तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। आप हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार। मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Our business is our business, none of your business.
5: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
6: Qatar का number one radio station.
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: देखिए बात जो है ना बड़ी सिंपल है कि ए आर रहमान का म्यूजिक हो एंड गाने में एक अलग सी एनर्जी ना हो ना यार, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जिस तरह से मैं आपकी ज़िंदगी में आऊँ एक अलग एनर्जी का वो सर्ज ना हो ये भी हो नहीं सकता। अगर साल 2006 की फिल्म की मैं बात करूँ यानी कि रंग दे बसंती की एंड उसमें इस खूबसूरत गाने यानी कि रूबरू को आपने याद ना किया तो भाई समझ जाए आपकी फिल्मी लाइफ जो है ना ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से अधूरी है। खासकर ये गाना वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स, इनफैक्ट जिम में एक्सरसाइज के समय ये मेरा पेटेंट प्लेलिस्ट है। ए आर रहमान एंड नरेश अय्यर की खूबसूरत सी आवाज़, म्यूजिक की बात करें खुद रहमान साहब का म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय द मल्टी टैलेंटेड प्रसून जोशी। चलिए जी ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इस वक्त जनाब जिंदगी में कुछ चीज़ों के आमने सामने आने से पहले तैयारी कर लेना जो है ना ये ज्यादा समझदारी की बात होती है, लेकिन किसकी जरा बता दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: देखो मौसम बदलते ही हर घर में ना कोई कहानी जो है वो ज़रूर शुरू होती है। ये कहानी होती है छींकों की, ये कहानी होती है बुखार जुखाम की या तो फिर खांसी की जो खासकर रात के वक्त हमें बहुत ज़्यादा तंग परेशान किया करती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई फैमिली पैकेज के तौर पे ये जो बिन बुलाए मेहमान हमारी ज़िंदगी में आते हैं उनसे राहत मिल सके, प्रिकॉशन के तौर पर कोई मेजर्स अपना सकें तो हम अपना इग्नोर करें तो क्यों ही करें। वेल इस वक्त ये बात अगर हमसे किसी ने कही है तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने, जिन्होंने सीजनल फ्लू वैक्सीनेशन कैंपेन अपना शुरू कर दिया है। एंड सबसे अच्छी बात ये है अगर मैं फ्लू वैक्सीन की बात करूँ तो इट इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री। बिल्कुल ठीक सुना आपने, कतर के सभी PHCC यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन सेंटर्स में, हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में, सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, इनफैक्ट 50 से ज़्यादा प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी ये वैक्सीन इस वक्त आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। तो जाइए, जाकर घर में अगर बच्चे हैं या तो कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं, एल्डरली हैं या भैया किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है हल्की भी, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में जाकर आप जो है फ्लू वैक्सीन अपनी जिंदगी में शामिल करें। बाकी तो कहते हैं ना हर किसी के लिए जी, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाकी हर एक बीमारी से राहत देने के लिए, आपके इमोशनल लेवल को और भी ज्यादा ऊपर पहुंचाने के लिए ना पॉजिटिव वे, मैं तो टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट। कार्तिक की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गाना है जो मैं आप तक पहुंचाती हूँ, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super specialty clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: कौन है?
9: स्टेन।
8: स्टेन कौन?
9: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को। मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
10: खट-खट, who that?
11: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: सिंह की खूबसूरत सी आवाज शिल्पा राव का साथ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। इस वक्त जवान हमसे आपको ये गाना तो मैंने सुना दिया, लेकिन अगर आने जाने के सिलसिले की बात करें तो अब ये बहुत खूबसूरत तरह से बस शुरू होने वाला है।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, फाइनली अक्टूबर का महीना जब हमारी जिंदगी में दस्तक दें, 15 दिन ऑलरेडी निकल चुके हों, तब इतना समझ जाएं कि मंथ एंड आते ही अगर जिंदगी में कुछ आने वाली है तो वो है छुट्टियों की बहार। क्योंकि क्या है ना, एक पॉइंट के बाद, एक फेज के बाद बच्चों की छुट्टी के हिसाब से हमारी छुट्टियां जो हैं वो प्लान्ड होती हैं। तो बस वो दौर, वो टाइम बहुत जल्दी आ रहा है। एंड इसके अलावा आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मिर्ची टर्मिनल की अगर हम बात करें तो हाँ, इसका आगाज भी जो है वो हो चुका है। कब, कहाँ, कैसे, किस बार, ये सारी बातें बहुत जल्द पता चलेंगी। लेकिन चूंकि छुट्टियों की बात हो रही है, चूंकि टर्मिनल की बात हो रही है, यानी कि कोई ना कोई नए जगह को एक बार फिर से एक्सप्लोर करने की बात हो रही है, तो चलिए क्यों ना आज के क्विज पे कुछ इस तरह का मसाला मैट करें कि भारत की कोई तो एक ऐसी सिटी है जिसके बारे में मैं आपको देने वाली हूं एक हिंट। आपको सुनना है, आइडेंटिफाई करना है, बस मुझे ये बताना है कि ये कौन सा शहर है जिसकी कोई खास बात मैंने आपके बीच पेश की है, एंड ये किस स्टेट है, कब, कहां, कैसे, किस बार, ये सारी बातें बहुत जल्द पता चलेंगी। लेकिन चूंकि छुट्टियों की बात हो रही है, चूंकि टर्मिनल की बात हो रही है, यानी कि कोई ना कोई नए जगह को एक बार फिर से एक्सप्लोर करने की बात हो रही है, तो चलिए क्यों ना आज के क्विज पे कुछ इस तरह का मसाला मैट करें कि भारत की कोई तो एक ऐसी सिटी है जिसके बारे में मैं आपको देने वाली हूं एक हिंट। आपको सुनना है, आइडेंटिफाई करना है, बस मुझे ये बताना है कि ये कौन सी

आज का मेरा सवाल ये है कि भारत में ऐसा कोई तो शहर है जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की वो कौन सी सिटी है जो पिंक सिटी के नाम से मशहूर है? फटाफट से मुझे बताएं और इसकी दास्तान अब से कुछ देर बाद मैं आप तक पहुंचाऊंगी। 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल सुर निगम की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोर्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे. That used to be the spot in my school.
4: Toilet?
3: हाँ.
4: School था, कंजर खाना खुला हुआ था.
3: So, दोनों.
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोर्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोर्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: खटखट
6: भट्ट
7: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
6: भट भट भट भट भट भट भट, बाइक बहुत आवाज करती है।
7: खटखट हू दैट,
1: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: की खूबसूरत से आवाज में द लवली ट्रायंगल्स फ्रॉम द फिल्म वॉर टू। एंड इस फिल्म में अगर आपको कोई नजर आए तो वो है ऋतिक रोशन, साथ में कियारा आडवाणी। एंड क्या टर्फिक पेयर था यार, मतलब खूबसूरती जब एक साथ इतनी सारी फ्रेम में आ जाए ना तो सब कुछ उतना ही खूबसूरत लगता है, जैसा कि आपको और हमारा साथ। मिर्ची अंशु यार मान गई मैं कि जनरल नॉलेज के टेस्ट में जितनी एक्सपर्ट मैं रही हूँ उतने ही आप भी हैं। मतलब बच्चों को आप प्रेशराइज करते होंगे लेकिन हाँ आपको भी पता ज़रूर है, क्योंकि आज के डेट पे कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है कि हम बच्चों से 100 सवाल करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं खुद उसमें उलझ जाते हैं। चलिए, अब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच एक क्वेश्चन पेश किया था जो कि भारत की एक बहुत ही खूबसूरत सिटी की कोई तो कहानी को बयां करता है। एंड आज मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर मैं इंडिया की एक ऐसी सिटी की बात करूँ जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है तो उसका नाम क्या है। बहुत सारे रिप्लाई, लेकिन जिन लोगों ने आवाज में कुछ रिकॉर्ड कर भेजा, चलिए उनकी आवाजें आप तक पहुंचा दें।
1: गुड मॉर्निंग अंशु, जयपुर पिंक सिटी के नाम से पहचाना जाता है।
2: राजस्थान का जयपुर सिटी, पिंक सिटी जयपुर राजस्थान, राजस्थान में आया जयपुर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा वो पूरी तरह से सही। पधारो महरे देश, जितने भी मारवाड़ी हैं बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर पिंक सिटी गुलाबी शहर की बात करें तो भारत की खूबसूरती को बयां करता हुआ अगर ये कोई शहर है तो वो है जयपुर, जो कि आता है राजस्थान में। लेकिन यार यहाँ पे ना एक सवाल है कि आखिरकार इसे पिंक सिटी का नाम क्यों दिया गया, कोई और दूसरा रंग भी तो हो सकता था, वाई बेसिकली स्पेसिफिकली पिंक। अब इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। बात है साल 1876 की, जब ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स यानी कि अल्बर्ट एडवर्ड जयपुर आने वाले थे। एंड उस समय जयपुर के महाराजा हुआ करते थे सवई राम सिंह सेकंड। एंड उन्होंने सोचा कि इस रॉयल गेस्ट का वेलकम जो है ये भी पूरी तरह से रॉयल अंदाज में होना चाहिए। तो अगर हम बात करें जयपुर की, खासकर राजस्थान की, तो वहां पर मेहमान नवाजी का अगर कोई रंग है तो वो है गुलाबी। तो उन्होंने क्या किया भाई साहब, पूरे के पूरे शहर को अगर किसी रंग में रंगवा दिया तो वो है गुलाबी। जरा सोचें, एक गेस्ट के वेलकम के लिए इतनी मशक्कत। लेकिन कहते हैं ना कि अगर दिल से कोई काम किसी एक शख्स के लिए भी किया जाए और उसका रिजल्ट अगर अच्छा निकले तो भैया जमाने तक हिस्ट्री जो है ना वो रची जाती है, लिखी जाती है। एनएसए के बाद तब से लेकर आज तक अगर जयपुर किसी नाम से जाना जाता है तो वो है पिंक सिटी। लेकिन यहाँ पर जयपुर के बारे में एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी कहानी है। सारी बातें अभी बता दूंगी तो कुछ देर में क्या करेंगे, चलिए जयपुर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अब से कुछ देर में मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जितने भी लोग राजस्थान से इस वक्त कनेक्टेड हैं, मुझे सुन रहे हैं, ज़रा हाय हेलो तो भेज दो। एंड जयपुर वाले भैया आप तो एक स्पेशल गुड मॉर्निंग मैसेज भेजेंगे 5000 1896। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम @mirchi1 कथरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल विशाल डिडलानी की खूबसूरत सी आवाज़ एंड अगला प्यारा सा गाना आपके लिए, एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: मैं अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़, क्या खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द फिल्म एमएस धोनी। ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन जिस कहानी की शुरुआत की थी जरा उसकी कंक्लूजन तक हम पहुंच जाएं।
1: मिर्ची अंशु
0: कहते हैं ना, जब कभी कोई चीज़ प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाई जाए, कंडक्ट की जाए, इन दैट केस उसका जो रिजल्ट होता है ना वो बहुत सही होता है। आपसे कुछ देर पहले मैंने आपके सामने कहानी बयां की कि किस तरह से जयपुर के राजा ने, महाराजा ने भैया ब्रिटेन के प्रिंस का वेलकम में पूरी तरह से गुलाबी रंग से सिटी को रंगा एंड उसके बाद से पिंक सिटी के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन अगर मैं जयपुर की दूसरी कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो क्या आपको पता है कि जयपुर सिर्फ अपनी खूबसूरती या गुलाबी रंग के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि ये इंडिया की सबसे पुरानी प्लान सिटीज़ में से भी एक है। बिल्कुल, बात है साल 1727 की, जब महाराजा सवाई जय सिंह सेकेंड ने जयपुर शहर की स्थापना की। एग्जैक्टली, इट इज़ अ प्लान्ड सिटी। ज़रा सोचिए, लगभग 300 साल पहले जब आज जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब ही जयपुर के जो रोड्स या मार्केट्स या रेजिडेंशियल एरियाज हुआ करते थे, सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिज़ाइन किया गया। एंड आज भी उस पुराने शहर की झलक जो है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलती है। लेकिन भारत की यही बात तो कमाल है यार, कि जयपुर सिर्फ एक अकेला शहर नहीं जिसे पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया है, बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जिस्टेंस में आई हैं। फिर चाहे मैं चंडीगढ़ की बात करूँ, गांधीनगर की बात करूँ, भुवनेश्वर की बात करूँ, या लेटेस्ट अगर आपको देखना है आप नवी मुंबई की बात करें, बढ़िया ये सब तो है। लेकिन अगर अपनी कर्मभूमि की बात करें तो भाई कतर में प्लानिंग के साथ किसी सिटी को कैसे इवॉल्व किया जाता है, इस बात का लाइव एग्जाम्पल देखना है तो सबसे बड़ा शहर अगर मुझे कोई लगता है तो वो है लुसेल सिटी एंड दूसरा मिश्रप डाउनटाउन। दोनों के अलग फ्लेवर्स, अलग नेचर, लेकिन हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सही एग्जाम्पल एंड मिसाल जो है ना कतर हमारी आंखों में जरूर देता है। चलिए जी, काफी सारा इंफॉर्मेशन इस वक्त आप तक पहुंचा दिया, आप जो है गुड मॉर्निंग मिस्टर मुझ तक पहुंचा दें। 5000186 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल अरिजीत सिंह निकिता गांधी की आवाज में ये अगला प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म केदारनाथ आपके लिए। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. Na vidvala burga. Mirci, burga.
1: Hello? Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103, राइट? वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000. वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो.
1: आपने नहीं किया है?
2: नहीं.
1: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
1: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम. मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला? किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
1: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे भी निकाले.
1: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल. ओके
1: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
1: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं. मुझे नहीं पता. आप मुझे क्या बताए? आप बतमीजी से बात मत करिए. सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर. ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
2: क्या
1: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है? किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं. आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
1: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी. जा बेटा जा.
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Cispa.
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
2: कट कट।
3: अबे कौन है?
2: उत्तपा।
3: उत्तपा कौन?
2: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
3: खट खट। Who's that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: अभिजीत एंड अलका याग्निक की खूबसूरत सी आवाज़ एंड जरा सोचिए 90s के एरा का ये मैजिक भाई। जब जब एक बार मैं उस माहौल में उस एरा में फिर से जाती हूँ ना, बहुत सारी खूबसूरत यादें बस बाहर आई जाती हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: यार पता है हमारे घर में ना एक अलग सा कल्चर हुआ करता था कि जब भी कोई फेस्टिवल का मौका आएगा घर में ना वो पुश्तैनी जेवर जो है वो पहने जाएंगे। मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि किस तरह दादी जो है अपने पिटारे से अपने डिब्बे से वो मम्मी को कुछ अपने खास गहने दिया करती थी दिवाली के ओकेजन में पहनने के लिए जो दादी को उनकी सासू माँ से मिली है। ना जाने कितने जनरेशन से ये परंपरा जो है बस वो कायम रही। एंड जब मम्मी उसे पहनती थी सजती थी संवरती थी इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी लगा करती थी ना यार। मतलब उनके उस जमाने के ना कहना चाहिए लेटेस्ट पूरे ही पूरे आउटफिट के साथ एक ट्रेडिशन का मेल, भाई ये जो नज़ारा है ना ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। एंड आज भी अगर आप देखने की कोशिश करें आप कितनी भी नई चमक धमक अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ले आएँ, लेकिन यार कुछ पुश्तैनी चीज़ें जो होती हैं ना उन्हें जब आप रीडिज़ाइन करवाते हैं या एक बार फिर से उस तरह से कुछ बनवाते हैं भाई वो मैजिक जो है ना ऑल टुगेदर बहुत अलग है। चलिए यार फेस्टिवल का मौका आ रहा है, इसे पहनती थी सजती थी संवरती थी इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी लगा करती थी ना यार। मतलब उनके उस जमाने के ना कहना चाहिए लेटेस्ट पूरे ही पूरे आउटफिट के साथ एक ट्रेडिशन का मेल, भाई ये जो नज़ारा है ना ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। एंड आज भी अगर आप देखने की कोशिश करें आप कितनी भी नई चमक धमक अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ले आएँ, लेकिन यार कुछ पुश्तैनी चीज़ें जो होती हैं ना उन्हें जब आप रीडिज़ाइन करवाते हैं या एक बार फिर से उस तरह से कुछ

0: 2672. 10 grams की बात करूं, सोरेस प्राइस एट कतरी रियाल्स 5276. 1 ounce की बात करूं, सोरेस प्राइस एट कतरी रियाल्स 16307. एंड वहीं अगर 10 तोले की बात करें, सोरेस प्राइस एट कतरी रियाल्स 60537 जी. तो जाइए फटाफट से परचेसिंग जो है शुरू करिए, उसके बाद मिलके कोई अच्छा जेवर जो है रजवाड़े स्टाइल का मिलके बनवाएं. क्या कहती पब्लिक? एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.
1: Stay ahead of today's gold rates with Alpardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सो अली खान, हमने सुना है कि सैफ एंड कुणाल बोथ आर ग्रेट कुक्स, आप क्या बना सकते हो?
3: थियरी में तो मैं भी दाल चावल बना सकती हूँ, थियरी में। कभी मतलब वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिला है, लाइक इट हैजंट गॉट दैट बैड कि मुझे किचन में जाने की जरूरत हुई है अब तक। कुणाल कुक्स वेरी वेल एंड भाई कैन मेक वेरी गुड स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड पास्ता।
2: दैट वाज सो अली खान ऑन बॉलीवुड बोल्डा। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
5: कम है के?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Well, Vadim Jain ki khubsurat si awaaz, Sachin Jigar ki composition, and what a power packed track it is from the film Zara Hatke Zara Bachke. Chaliye, gaana to maine aapko suna diya, lekin is waqt Zara Hatke Zara Bachke, aisa koi experience aapki zindagi mein main le aaun?
1: Mirchi Anshu.
0: Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aajay Anshu with you. यार एक बात कहूँ, जब भी हम बड़े पर्दे में किसी किरदार को अपना रोल निभाते हुए देखते हैं, हम जो है ना इंस्टेंटली जजमेंटल होते हैं कि भाई क्या कमाल की एक्टिंग की है भाई, इसने ना पूरी तरह से फाड़ के रख दिया भाई, नहीं यार मज़ा नहीं आया. लेकिन एक फिल्म को बनाने में ना जाने उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है. बस यही, फिल्म में जिस तरह से किरदार अपना रोल बनाते हैं निभाते हैं, उसी तरह हम जो है अपनी अपनी ज़िंदगी में अपना अपना रोल जो है निभाने की कोशिश कर रहे हैं. कई बार ये रोल जो है बहुत अच्छा साबित होता है, कई बार हम जो है खुद के अलावा औरों की नज़रों में थोड़े कम आके जाते हैं. लेकिन जो भी हो, कोशिश जो है वो इंसान को हमेशा करते रहना चाहिए. कहीं ना कहीं एक बार जिंदगी नामक फिल्म जो है ना पर्दे में आई हुई फिल्म की तरह सुपर डुपर हिट जरूर होगी, एटलीस्ट हमारी खुशी के लिए. चलिए जी, लेकिन इस वक्त एक ऐसी सुपर डुपर हिट फिल्म की एक आइकॉनिक सी हंसी मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ, जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में भी मुस्कान जो है ना जरूर लेकर आएगी. तो चलिए, एक ऑडियो बाइट मैं आप तक पहुंचाऊंगी, आप सुनेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड मुझे ये बताएंगे कि भाई ये अगर हंसी है, ये स्माइल है, तो किस एक्ट्रेस की है एंड साथ ही ये हंसी आपने किस फिल्म में सुनी है. करेक्ट आंसर कहां देंगे आप? 5000186 5000186. We will get connected there. Instagram Mirchi One Kataria Mirchi Anshu, and I would really, really appreciate your audio message. And here we go.

ऑलराइट, अब ये जो हंसी वाला कॉन्वर्सेशन हुआ, ये किस फिल्म में हुआ, किस एक्ट्रेस ने इसे रेप्लिकेट किया है? 5000186, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इतना बता दूं, ये बंदी जो है इसमें एक आरजे हुआ करती है. रेडियो जॉक, शुक्र मना, मैं ऐसी हंसी तुम तक नहीं पहुंचाती हूँ. 5000186, ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस विद फिल्म का नाम, बंदी का नाम. अभी फिलहाल अंशु अरिजीत सिंह की आवाज़, शिल्पा राव का साथ, नहीं अगला पावर पैक गाना हप्पी बी, एंजॉय.

0: मॉडल कविता सेठ है नीरज श्रीधर की पावर पैक आवाज फिल्म का नाम कॉकटेल टू एंड बंधु। मेरी जिंदगी में बंधु एंड सखी की बात करूँ तो वो तो आप ही हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: यार सच कहूं दिल में ना खुशी होती है, साथ ही बड़ा मजा आता है जब ये बात आपको पता चले कि आप जो हैं पूरे दिल से बातें कर रहे हैं, कोई है जो आपकी बातों को रिसीव कर रहे हैं, साथ ही अपनी खूबसूरत आवाज में या अपने खूबसूरत अल्फाज में आप तक अपना मैसेज जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपसे कुछ देर पहले मैंने एक आइकॉनिक सी हंसी आपके बीच पेश की थी एंड आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था भाई साहब कि ये हंसी है तो है किस एक्ट्रेस की एंड साथ ही किस फिल्म में, ऐसा कुछ आपको सुनाई दिया था। चलिए काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ पीपल हैव जस्ट जॉइन, जल्दी से वो आइकॉनिक हंसी वाला जो डायलॉग इन कॉन्वर्सेशन चल रहा है ना, मैं दोबारा आपको सुनाती हूं। अगर लगे कि अभी भी सुनते सुनते आइडेंटिफाई कर लिया है तो फटाफट से करेक्ट आंसर आप मुझे भेजेंगे 5000186 पर, 5000186 पर विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल सही जवाब तो मैं आप तक पहुंचा ही दूंगी, बट फॉर नाउ हियर वी गो। आप ऐसे कितने लोगों को अपनी बीवी अपनी मम्मी की याद आए मुझे एक बात बताएं। वैसे देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है, ये मैडम है तो है कौन?
2: विद्या बालन फ्रॉम मूवी आपकी सुलु।
0: आपने चुका ये पूरी तरह से सही यूसुफ भाई, आपने बिल्कुल एक्ट्रेस को तो सही पहचान ही लिया, लेकिन हाँ फिल्म की बात करें सिर्फ तुम्हारी सुलु एंड इसके अलावा जशाद सपना जितने भी लोगों ने रिप्लाई किया है दिल से थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएटेड। इस फिल्म की मैं बात करूं तो ये है तुम्हारी सुलु एंड ये आवाज, ये हंसी अगर किसी की है तो वो है विद्या बालन की। यार क्या कमाल की एक्ट्रेस है विद्या बालन, द डर्टी पिक्चर में जो सल का किरदार निभाया, अब कभी अगर उनकी कहानी फिल्म की बात करूं तो उसमें विद्या बख्शी एंड तुम्हारी सुलु में बिल्कुल एक आम सी होम मेकर जो अपने सपनों की एक नई उड़ान लेकर आगे बढ़ती है और अपनी मंजिल को पा ही लेती है। यार पता है क्या, जब 2017 में तुम्हारी सुलु रिलीज हुई थी ना, न जाने कितने लोग इस किरदार से खुद को रिलेट कर पाए। विद्या बालन है ऐसी एक्ट्रेस कि वो आपको महसूस करा देती हैं कि भाई साहब मैं जो हूं ना आपके बीच की ही कोई एक हूं। तो इतना ही कहना चाहूंगी, इस फिल्म से मैंने एक बात जरूर सीखी कि भाई दिल में अगर ख्वाहिश है, कुछ करने की चाहत है ना, तो माना कि तुम्हारे रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी, माना जिंदगी का सफर इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन जो ठान लिया कि अपनी मंजिल को पाना है ना, उस रास्ते पे अगर तुम निकल पड़े तो इतना समझ जाना कि पूरी कायनात कुछ इस तरह का आलम तुम्हारे लिए सजाएगी कि तुम अपनी मंजिल तक सिर्फ पहुंचोगे नहीं, एक नया आयाम जो है वो लिख कर आओगे। चलिए जी अब फिलहाल एक काम कर दूं, मोटिवेशन की बातें जो कही हैं उसके लिए आपके थैंक यू के मैसेज का मैं इंतजार कर लूं 5000186। बात अच्छी लगी तो एक हाई फाई या वो क्लैप तो बनता है। मीनवाइल तुम्हारी सुल्लू फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति एंड साशा तिरुपति की आवाज में एक गाना मैं आप तक पहुंचाऊं, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कम्प्लेट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी, किसी को हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है
3: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: GWM के मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती एंड फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
7: 89.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्वाल गौरव, और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में, और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं। यू गाइस एंजॉय इट।
8: It was great fun. Thank you, Mirchi. Thank you, GWM.
9: Thank you, Mirchi, for the GWM recharge. It was really fun, especially the magic show.
10: And show Gaurav, Afin, thank you very much.
5: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12th से 14th अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
11: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
12: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
13: 89.6
14: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: पावर पैक आवाज। एंड देखिए ये गाना ऐसा है जो हर घर के सवाल जवाब के सिलसिले को ना हमारे बीच पेश कर ही देता है।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मी थी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विथ यू। वेल, एक बात बता दूं, अगर पैसे के हिसाब किताब की बात करें ना, तो बचपन में मुझे इसकी बहुत अच्छी फिलॉसफी सिखाई गई थी। पापा मुझे कहते थे कि बेटा अगर कभी भी तुम कोई पैसे कमाओ ना, तो उसे चार भाग में डिवाइड करने का। पहले अगर 25% यानी कि 25% की बात करें, तो उसे अपने ज़रूरत की चीज़ें, ज़िंदगी को चलाने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है उनके लिए रखना। अगर मैं दूसरी 25% की बात करूँ, तो कैश के फॉर्म में उसे सेव करना, उसे इन्वेस्ट करना। अगले 25% की बात करें, तो वो कहा करते थे अब इसका निवेश हम अलग तरह से करेंगे, कभी सोना खरीदेंगे, कभी ज़मीन खरीदेंगे, यू नो, डिफरेंट मीन्स एंड मीडियम्स। एंड अगर लास्ट 25% की बात करें, तो उससे रखना किसी अच्छे काम के लिए, किसी का भला करने के लिए, साथ ही अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से दिल से एंजॉय करने के लिए। और हाँ, कुछ उसका एक पोर्शन स्पेसिफिक एजुकेशन के अलावा अच्छे फंड के लिए भी जरूर रखना। तो ये थी भैया मेरे पापा की फिलॉसफी, कहीं ना कहीं हमने इसे फॉलो किया। इसके बाद इसमें और इम्प्रोवाइजेशन होते गए, नई किताबें पढ़ी, बहुत कुछ सीखा। चलिए यार, हर किसी का इन्वेस्टमेंट का अलग तौर तरीका होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको भी इस वक्त कैश कुछ जमा करना है, तो जरा देखिए आज आईपी मनी में एक्सचेंज रेट्स का क्या ही बोलबाला है। वेल, अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आईपी मनी में आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.09, पाकिस्तानी रुपीज 76.11, बांग्लादेशी टाका 33.84, नेपाली रुपीज 41.71 एंड इसके साथ ही लंकन रुपीज 90.82। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां। लेकिन जी, आपकी जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने का तौर तरीका एक ही, अभी फिलहाल टिक के बने रहो एंड सुनते रहो मेरी आवाज़। सुनियो, इट्स हॉट मनी का नाम।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates iPay Wallet के साथ. No stress, self trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12th से 14th अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
9: छोड़ दे।
10: खट खट, हू दैट?
11: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

अनिल कुमार सानू, अनिल का अग्नि की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। एक बार फिर से 90s के नॉस्टैल्जिया में डाइव इन करते हुए ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इस वक्त कोई तो खास बात है जो मैं आपसे कहना चाहूंगी। अब ये जो बात है ये रियलाइजेशन से आई है, किसी सिनेरियो को समझकर महसूस करने के बाद कुछ सोचने से आई है। यार हम अपनी ज़िंदगी में बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं। बचपन में हम कुछ दोस्त यार बनाते हैं, हम जिस घर में बड़े होते हैं हमारे रिलेटिव्स, दोस्त यार, रिश्तेदार, माँ बाप बहुत लोग होते हैं। जब हम बड़े होते हैं, स्कूल कॉलेज पहुँचते हैं, अलग तरह के दोस्त हमसे बनते हैं। एंड उसके बाद एक पॉइंट पर जब आप काम करने लगते हो, आप कलीग्स बनाते हो, बाहर सोशल होते हो, कई लोग मिलते हैं। एंड हर कोई जो है ना हमें अलग अलग नज़रों से देखता है, हर हमें अलग पैमाने से तोलता है। हर किसी के लिए हम वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं या हम हकीकत में जिस तरह से हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपको वैसा समझ पाए, लेकिन पता है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि यार हम बहुत सारे लोगों की नज़रों में रहें, हमें बहुत लोग प्यार करें, जो कि शायद कईयों के लिए होता भी है, लेकिन ज़िंदगी का सही मैं कहूँ अचीवमेंट क्या है पता है? कि चाहे 4 से 5 लोग ही आपकी लाइफ में क्यों ना हो, मैं आपके परिवार के अलावा बात कर रही हूँ, आपके माँ बाप के अलावा, दोस्त भाई बहनों के अलावा बात कर रही हूँ, मैं दोस्त यारों की बात कर रही हूँ। ऐसे अगर ज़िंदगी में 4 से 5 लोग हैं ना जो आपको सही तरह से बताते हैं, अगर आप गलत हैं तो भी उसे आपको रियलाइज़ कराते हैं, लेकिन आपके एब्सेंस में आपके लिए लड़ जाएं, आपके बारे में कोई एक शब्द सुन ना पाए। भाई जो बोलना है मैं अपने दोस्त को बोलूँगा, लेकिन मैं उसके एब्सेंस में जो है ना उसके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। तो भाई समझ लो तुमने ना असल मायने में लोगों में जीत हासिल कर ली है। यार सामने में मीठा बनने का काम तो कई लोग करते हैं यार। सच्ची दोस्ती, सच्ची यारी तो वो है जो तुम्हारे एब्सेंस में तुम्हारे लिए लड़ जाए। अब जब मैंने ये बात कही, क्या आपके जहन में किसी की आवाज़ आई या किसी का नाम आया? सोचना ज़रूर। स्टूडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एन्जॉय।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: देखिए कौशल, आपको देख के लगता नहीं है आप किसी चीज से डरते होंगे, डर लगता है आपको?
3: पानी के अलावा सांपों से बड़ा डर लगता है, डर से ज्यादा रिपल्स हो जाता हूँ, मुझे एकदम
4: वही झंझरी
3: सी मच जाती है एकदम शरीर में।
2: जैसे झंझरी बोला है, मुझे अचानक से वो सेंसिटिव टूथपेस्ट झंझनाहट। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का गुस्सूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अब तो हिंदी फिल्म्स का सक्सेस सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस से नहीं जुड़ा होता।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: Yes, I agree. It's not a new thing in our Hindi film industry, but यार जिस ताबड़तोड़ तरीके से इस चीज को और ज्यादा इंटेंसिफाई किया जा रहा है, has made me talk about it. So एक वक्त था जब बॉलीवुड की फिल्म का सक्सेस मोस्टली इंडिया के बॉक्स ऑफिस से जुड़ा होता था, लेकिन आज पिक्चर बदल चुकी है मेरे दोस्त। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फिल्म इंडिया में कितना कमाएगी, बल्कि ये भी है कि भैया भारत से निकली कहानी मेलबर्न, दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क के ऑडियंस को कितना कनेक्ट करेगी। इनफैक्ट इस लिस्ट ऑफ मूवीज में एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेकर आए हैं इमरान हाशमी, क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्म गन मास्टर G9, जिसे डायरेक्ट करें आदित्य दत्त एंड इज गोइंग टू बी एन एक्शन रोमांस, वो ओवरसीज थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए भी काफी चर्चा में है फिलहाल। सो बेसिकली फार्स फिल्म्स ने इस मूवी के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को एक्वायर कर लिया है, जबकि इंडिया में इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पेन मधुर के पास है। बाकी फिल्म 27th ऑफ नवंबर को रिलीज होने वाली है। लेकिन ये रिलेशनशिप वन वे ट्रैफिक भी नहीं है। जिस तरह इंडियन फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में रिलीज कर रहे हैं, वैसे ही तो हॉलीवुड की फिल्में भी कर रही हैं यार। ओपनहाइमर, स्पाइडरमैन, द लिस्ट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो आज सिनेमा की दुनिया में बॉर्डर्स जरूर हैं, लेकिन स्टोरीज उन बॉर्डर्स को क्रॉस कर रही हैं, क्योंकि बाबू मोशाय इमोशंस की लैंग्वेज यूनिवर्सल होती है, चाहे वो बॉलीवुड का रोमांस हो, साउथ इंडियन सिनेमा का एक्शन हो या हॉलीवुड का स्पेक्टिकल। और शायद आने वाले वक्त में किसी फिल्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ ब्लॉकबस्टर होना नहीं, बल्कि दुनिया भर के ऑडियंस की फेवरेट कहानी बनना होगी। क्या कहते हो? मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: Meethi Mirchi, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: Energy. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vie
1: fala burga. Milchi burga. हेलो
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
2: नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
2: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये मुझे भी भेजना
2: राज जी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजना।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। अब थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया आपका, अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: हेलो शॉप्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। नवरात्रि के पहले दिन हुआ इस फिल्म का मुहूर्त। बात हो रही है दो अक्लेम्ड फिल्म मेकर्स हंसल मेहता और रॉबी ग्रेवाल के अपकमिंग प्रोजेक्ट की, जिसके साथ ही ये दोनों फर्स्ट टाइम कोलैब कर रहे हैं। और इस सीरीज का नाम है बिलियनेयर, जिसमें मेजर इकबाल बोले तो हमारे अर्जुन रामपाल एज लीड नजर आने वाले हैं। बाकी 15 नवंबर से इस सीरीज की शूटिंग यूके में शुरू होने वाली है, जहां बिजनेस की दुनिया के एम्बिशन, पावर और हाई स्टेक्स को बैकड्रॉप बनाया जाएगा। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। गणेश आचार्य बी टाउन के रिनाउंड कोरियोग्राफर, वो अपना एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं थ्रू हिज फिल्म, जिसको वो डायरेक्ट भी कर रहे हैं, जहां उनके डांस की जर्नी और पर्सूट ऑफ सक्सेस को टच किया जाएगा। मूवी का नाम है गणेश डस्ट टू स्टारडस्ट, जिसका ट्रेलर इज आउट। बाकी द फिल्म इज सेट रिलीज ऑन द 11th of December, जिसमें शिवांशु सोनी, आलोक शॉ, सुकन्या कलन और साक्षी पवस्कर जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। रामायण पार्ट 1 को लेकर एक मेजर अपडेट आया है। सो द मूवी इज सेट टू रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन द 5th of November, इस चीज को कंफर्म कर दिया गया है। बाकी फिल्म के पेड प्रीव्यूज को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं की गई। हाँ, ये जरूर बताया गया है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग्स दशहरा से ही शुरू हो जाएगी। बाकी नितेश तिवारी डायरेक्टोरियल रामायण में रणवीर कपूर, रवि दुबे, साई पल्लवी, यश और सनी देओल जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। बाकी अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो हेलो, अपने दिमाग के घोड़ों को जरा लगाम लगाइए, वापस आइए। मैं तो मिर्ची फिल्मची गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार, जिसकी शुरुआत आज की है कामिनी ने, और ये मोहतरमा मिली है मुझे चंडीगढ़ से। शी डीएम मी बेसिकली, आपको तो ड्रिल पता है कि मेरे इंस्टा पे जाके आपको अपना नंबर डीएम करना होता है। तो मैम क्या तैयार है आप?
3: हाँ श्योर।
0: ओके, तो देखते हैं आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा कितना जागता है। तीन फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं इस मूवी में जो स्मगलिंग का हिस्सा बनती हैं। कौन सी फिल्म है ये?
3: क्रू करके है फिल्म।
0: यस यू आर राइट। क्रू में जूनियर फ्लाइट अटेंडेंट कौन है?
3: जूनियर कृति सैनन।
0: यस, कृति सैनन रिपोर्ट किस फिल्म में बनी है?
3: तेरी बातों में
0: उलझा जिया। यस इट इज। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में रोबोटिक्स इंजीनियर कौन है?
3: शाहिद कपूर।
0: यस, शाहिद कपूर उस्तरा से किस फिल्म में अपने दुश्मनों को मारते हैं?
3: ओ रोमियो।
0: ओ रोमियो में उस्तरा को किससे प्यार हो जाता है?
3: तृप्ति डिमरी।
0: यस, तृप्ति डिमरी की किस फिल्म में कैरेक्टर्स के नाम है रेखा जया सुषमा?
3: मैम ये अभी जस्ट आई है, मैंने बड़ी अच्छी देखी है ओटीटी पे।
0: हाँ,
3: बहन, माँ बहन।
0: यस, माँ बहन में जया और सुषमा की माँ कौन है?
3: माधुरी दीक्षित।
0: माधुरी दीक्षित को किस फिल्म में उनकी दीदी का देवर दीवाना होता है?
3: हम आपके हैं कौन।
0: हम आपके हैं कौन में दूल्हे की साली से फ्लर्ट कौन करता है?
3: सलमान खान।
0: यस, सलमान खान किस फिल्म में प्यार में पागल हो जाते हैं?
3: तेरे नाम।
0: तेरे नाम में किससे प्यार होता है उनको?
3: भूमिका चावला।
0: भूमिका चावला की किस फिल्म में पेटीकोट बाबा हैं और वो कौवा बिरयानी खा लेते हैं?
3: हाँ, ये मैंने अभिषेक बच्चन की रन मूवी।
0: यस, रन में भूमिका के साथ कौन घर से रन करता है?
3: अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन एक बिजनेस टाइकून किस फिल्म में बने हैं?
3: गुरु गुरु गुरु।
0: गुरु में मेघा को बरसों बरसों कौन बोलता है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय चोर किस फिल्म में बनी है?
3: धूम मचाले धूम मचाले। धूम टू।
0: धूम टू में शेफ चोर कौन है?
3: ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन बहती नदी से मछली किस फिल्म में निकाल लेते हैं?
3: क्रिश क्रिश क्रिश क्रिश
0: क्रिश। में किसको प्यार की एक कहानी सुनाते हैं वो?
3: प्रियंका चोपड़ा।
0: बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ आज आपने एक गो में ही हमारा ये मिर्ची फिल्म ची गेम खत्म कर दिया है। तो ब्रो आपको ये टैग देना तो बनता है।
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: नहीं नहीं, फोमो फील करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, जलो मत प्रयत्न करो, और ऐसा करने के लिए मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर डीएम करो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
4: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: 90s में मूवी देखना मतलब समा बांधना।
1: 90ml, 90ml. With Shruti.
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप। और यार 90s में मूवी देखना मतलब OTT खोलना नहीं होता था, मूवी देखने के लिए वीडियो कैसेट्स लाइब्रेरी जाना पड़ता था। अब इतना ह्यूज टर्म तो नहीं इस्तेमाल करूंगी, वो लाइब्रेरी नहीं, हमारे मोहल्ले के कोने की दुकान हुआ करती थी। वहां शेल्फ्स पे लगी कैसेट्स के कवर्स देख देख कर डिसाइड करना कि भाई आज क्या देखना है। फिर घर आते ही एक कैसेट VCR में लगती थी और पूरी की पूरी फैमिली TV के सामने। ओह, इसके पहले तो माहौल बनता था यार, पूरे घर में अंधेरा किया जाएगा, लाइट की एक किरण भी से नहीं आनी चाहिए, और बिस्तर पे अगर जगह कम पड़ जाए तो भाई नीचे गद्दे बिछाए जाते थे। और याद है वो रीवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड के बटन्स, भाई उनकी तो अपनी ही इंपॉर्टेंस हुआ करती थी ना। फेवरेट सीन दोबारा देखना है तो रीवाइंड करो, मूवी खत्म तो भाई रीवाइंड करके ही कैसेट वापस करनी है, वरना तो वीडियो लाइब्रेरी वाले भैया आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता था

भी सिलेक्ट करने का सस्पेंस, क्योंकि आपको सब कुछ डिसाइड करना होता था सिर्फ कवर देख के, और गलती से अगर वो बकवास निकली तो पूरे घर की मीटिंग होती थी कि हाय पैसे वेस्ट हो गए। देखो आज ओटीटी पे हजार मूवीज हैं, लेकिन वो एक कैसेट चूज करने की कीमत तुम क्या जानो जेंजी बाबू, काश की वो फीलिंग भी रिवाइंड हो सकती। अब यादों का पिटारा खुल ही चुका है, तो जरा ध्यान लगा के सोचिए और बताइए कि आपने वीसीआर पे लास्ट मूवी कौन सी देखी थी। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: देखिए कौशल, आपको देख के लगता नहीं है आप किसी चीज से डरते होंगे, डर लगता है आपको?
2: पानी के अलावा सांपों से बड़ा डर लगता है, डर से ज्यादा रिपल्स हो जाता हूँ, मुझे एकदम वही झंझरी सी मच जाती है एकदम शरीर में। क्या
1: जैसे झंझरी बोला ऐसे मुझे अचानक से वो सेंसिटिव टूथपेस्ट से झंझनाहट। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: She is not your regular heroine.
1: Shruti. मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हूँ आप और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हमें अलग अलग कैरेक्टराइजेशंस देखने को मिले हैं ऑफ एक्ट्रेसेस, राइट. लेकिन आज मैं उन हीरोइंस की बात करने वाली हूँ जिनके हाथ में फूल नहीं FIR होते हैं. सो बॉलीवुड में पुलिस यूनिफॉर्म ट्रेडिशनली हीरोज की टेरिटरी रही है, राइट. वो सिंघम हो, दबंग हो, सिम्बा हो, द लिस्ट इज रियली लॉन्ग. लेकिन जब हमारी फीमेल एक्टर्स ने खाकी पहनी तो सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनी, अपने साथ एक अलग काइंड ऑफ अथॉरिटी, अग्रेशन और वल्नरेबिलिटी भी लेकर आई. तो आज मेरे पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से मिली हमें कुछ अल्टीमेट लेवल वुमेन कॉप्स. लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी का किरदार फ्रॉम द मूवी मर्दानी. नंबर दो पे बात करेंगे DCP वर्तिका चतुर्वेदी के बारे में, प्लेड बाय शेफाली शाह इन दिल्ली क्राइम. नंबर तीन पे IG मीरा देशमुख प्लेड बाय तबू इन दृश्यम. नंबर चार पे SP आभा माथुर प्लेड बाय प्रियंका चोपड़ा इन जय गंगाजल. और नंबर पांच पे कस्तूरी डोगरा प्लेड बाय रवीना टंडन इन अरण्यक. तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं उस कॉप की जिसके नाम में ही एटीट्यूड है, शिवानी शिवाजी रॉय. रानी मुखर्जी आज शिवानी क्राइम ब्रांच ऑफिसर हैं जो मर्दानी में चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट के खिलाफ खड़ी होती हैं. हमारी इस हीरोइन को किसी हीरो के बैकअप की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद इन्वेस्टिगेशन करती है, खुद क्रिमिनल्स को चेज करती है और जरूरत पड़े तो खुद एक्शन भी लेती है. इन शॉर्ट शिवानी शिवाजी रॉय स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ करेज, जस्टिस एंड अ वुमन्स रिफ्यूजल टू बैक डाउन. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और अब से कुछ ही देर में अपनी इस लिस्ट को वापस लेकर आऊंगी. टिल देन यू स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.
2: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज. फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज.

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La fiesta la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Could I speak to Manish, please?
1: Speaking.
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से.
1: ओके
2: मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
1: करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा.
2: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले मेरी बात. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. आप हेलो. वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने. उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया. मैं बता दूंगा उनको.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी. सीरियसली माही?
3: यस बेबो.
0: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
3: यस yes.
0: कैच क्या है?
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
0: आई स्टिल कांट बिलीव इट. नो कैच.
3: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
4: खट खट.
5: कौन है?
4: अज्जू.
5: अज्जू कौन?
4: अज्जू ना आए बाल मां, सावन बीता जाए. होए
5: खट खट. हू दैट?
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.

0: हाँ अभी भी बहुत कमी है, बट वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बस इस वाले काम की स्पीड ना थोड़ी बढ़ जानी चाहिए। आप देखो, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े कि भाई ये लड़की क्या ही बोल रही है। बेसिकली आज ना मैं अपने पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ अल्टीमेट फीमेल कॉप्स की डिस्कशन कर रही हूँ। और जब ये लिस्ट तैयार कर रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ दैट वी जस्ट हैव अ हैंडफुल ऑफ सच कैरेक्टर्स यार। तो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट शिवानी शिवाजी रॉय, प्लेड बाय रानी मुखर्जी इन मर्दानी सीरीज। अब नंबर दो पे बात करते हैं डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के बारे में, प्लेड बाय शिफाली शाह इन द सीरीज दिल्ली क्राइम। तो अगर शिवानी शिवाजी रॉय खाकी की फायर है ना, तो वर्तिका चतुर्वेदी खाकी का कंपोजर है। दिल्ली क्राइम का बैकड्रॉप एक हॉरिफाइंग रियल लाइफ केस से इंस्पायर्ड इन्वेस्टिगेशन है और शिफाली शाह की डीसीपी वर्तिका उस इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में खड़ी है। वो हर वक्त गुस्से में चिल्लाने वाली बी टाउन कॉप नहीं है, वो सुनती है, ऑब्जर्व करती है, कैलकुलेट करती है और फिर डिसीजन लेती है। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल लेयर इज यूनिफॉर्म के पीछे का इंसान। केस का प्रेशर है, विक्टिम्स का ट्रॉमा है, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर घर लौटकर एक नॉर्मल वाइफ और माँ होने की कोशिश भी। इन शॉर्ट, शिफाली शाह ने वर्तिका को सुपर हीरो बनाने के बजाय ह्यूमन रखा। नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट आईजी मीरा देशमुख, प्लेड बाय तबू इन दृश्यम। सो ये एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनके सामने एक ऑर्डिनरी फैमिली ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग कर डाली। दृश्यम में अजय देवगन एज विजय सलगांवकर अपने फैमिली को बचाने के लिए एक इलैबोरेट स्टोरी तो क्रिएट करते हैं, लेकिन उनकी उस स्टोरी के सामने खड़ी है हमारी आईजी मीरा देशमुख, एक ऐसी पुलिस ऑफिसर जिसके लिए ये सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं, उनका पर्सनल क्वेस्ट बन जाता है। वेल, मेरी इस लिस्ट में अभी और दो ऐसे ही फीमेल कॉप्स की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: Mithi Mirchi, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.
1: इन्होंने खाकी को सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं, एक पर्सनालिटी बना दी.
2: श्रुति, श्रुति, श्रुति.
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हुआ आप और मैं बात कर रही हूँ हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ अल्टीमेट लेवल फीमेल कॉप्स की, जो कभी सिस्टम से लड़ती दिखी, कभी क्रिमिनल से, कभी एक इम्पॉसिबल केस से, और कभी कभी खुद के इमोशन से. तो लिस्ट में सबसे पहले हमने बात की शिवानी शिवाजी रॉय प्लेड बाय रानी मुखर्जी के बारे में. नंबर दो पे वी टॉक्ड अबाउट डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी प्लेड बाय शिफाली शाह. नंबर तीन पे वी डिस्कस्ड अबाउट आईजी मीरा देशमुख प्लेड बाय तबू. और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट एसपी आभा माथुर प्लेड बाय प्रियंका चोपड़ा इन द मूवी जय गंगा जल, जहां कहानी एक इंडिविजुअल क्रिमिनल से ज्यादा पूरे सिस्टम के खिलाफ है. प्रकाश झा की जय गंगा जल एक ऐसे पुलिस सिस्टम को एक्सप्लोर करती है जहां पावर, पॉलिटिक्स, करप्शन और क्राइम एक दूसरे से जुड़े हैं. और उसी बीच आभा माथुर एक ऐसी ऑफिसर हैं जो एक करप्ट सेटअप में एंटर करती हैं और डिसाइड करती हैं कि सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं, चैलेंज करना है. मूविंग ऑन नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट कस्तूरी डोगरा प्लेड बाय रवीना टंडन इन द क्राइम थ्रिलर अरण्यक. सो ये फिल्म एक एटमोस्फेरिक क्राइम थ्रिलर है जहां एक हिल टाउन में एक मिस्टीरियस डिसअपियरेंस और एक सपोजिटली मिथिकल क्रीचर की कहानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को एक स्ट्रेंज डायरेक्शन में ले जाती है. फिल्म में कस्तूरी का किरदार इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो पिक्चर परफेक्ट कॉप नहीं है. शी इज मेसी, कॉम्प्लिकेटेड एंड डेफिनेटली ह्यूमन. एक तरफ उसकी ड्यूटी है, दूसरी तरफ फैमिली और पर्सनल लाइफ. एक तरफ इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर है, दूसरी तरफ अपने ही इमोशनल बैगेज का वेट. और शायद इसी वजह से कस्तूरी बाकी फीमेल कॉप से अलग लगती है. वेल, मेरी इस लिस्ट में आप भी कोई ऐसी ही फीमेल कॉप का नाम ऐड करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट. बट ये बात तो सच है यार, दैट इट्स हाई टाइम कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ऐसे मीटी फीमेल कॉप्स वाले रोल्स हमें और देखने को मिले. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
0: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6
0: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: भाई अब तो हिंदी फिल्म्स का सक्सेस सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस से नहीं जुड़ा होता।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: Yes, I agree, it's not a new thing in our हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बट यार जिस ताबड़तोड़ तरीके से इस चीज को और ज्यादा इंटेंसिफाई किया जा रहा है has made me talk about it. So, एक वक्त था जो बॉलीवुड की फिल्म का सक्सेस मोस्टली इंडिया के बॉक्स ऑफिस से जुड़ा होता था, लेकिन आज पिक्चर बदल चुकी है मेरे दोस्त। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फिल्म इंडिया में कितना कमाएगी, बल्कि ये भी है कि भैया भारत से निकली कहानी मेलबर्न, दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क के ऑडियंस को कितना कनेक्ट करेगी। इनफैक्ट इस लिस्ट ऑफ मूवीज में एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेकर आए हैं इमरान हाशमी, क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्म गन मास्टर G9, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त एंड इज गोइंग टू बी एन एक्शन रोमांस, वो ओवरसीज थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए भी काफी चर्चा में है फिलहाल। सो बेसिकली फार्स फिल्म्स ने इस मूवी के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को एक्वायर कर लिया है, जबकि इंडिया में इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पेन मधुर के पास है। बाकी फिल्म 27th ऑफ नवंबर को रिलीज होने वाली है। लेकिन ये रिलेशनशिप वन वे ट्रैफिक भी नहीं है। जिस तरह इंडियन फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में रिलीज कर रहे हैं, वैसे ही तो हॉलीवुड की फिल्में भी कर रही हैं यार। ओपनहाइमर, स्पाइडरमैन, द लिस्ट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो आज सिनेमा की दुनिया में बॉर्डर्स जरूर हैं, लेकिन स्टोरीज उन बॉर्डर्स को क्रॉस कर रही हैं, क्योंकि बाबू मोशाय इमोशंस की लैंग्वेज यूनिवर्सल होती है, चाहे वो बॉलीवुड का रोमांस हो, साउथ इंडियन सिनेमा का एक्शन हो या हॉलीवुड का स्पेक्टिकल। और शायद आने वाले वक्त में किसी फिल्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ ब्लॉकबस्टर होना नहीं, बल्कि दुनिया भर के ऑडियंस की फेवरेट कहानी बनना होगी। क्या कहते हो? मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अनिल कपूर सर, I'm sure आप ये सुन सुन के थक चुके हैं कि आप इतनी यंग कैसे दिखते हैं, but I really would like to know, आपको खाने में क्या पसंद है?
3: जैसे मैं क्या, मैं हर चीज खाता हूँ, but I love all kinds of food. I love Japanese food, Chinese food, Indian food, North Indian food, South Indian food, और Gujarati food. Sometimes I love Thai food, Mexican food. खाने में I'm not fussy about food. दिल से प्यार से अगर कोई बना के दे तो मुझे अच्छा लगता है.
2: आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood, bold eye. Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: डायरेक्टर साहब ने इस फिल्म पे 7 सालों तक रिसर्च किया था। सरफरोशी के शमा दिल में जला लो यारो। यस, एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट मैं बात कर रही हूँ 1999 में रिलीज हुई फिल्म सरफरोश के बारे में, जिसमें आमिर खान और सोनाली बेंद्रे लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। एंड यस, जॉन मैथ्यू मथान जो हैं उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। सो बेसिकली उन्होंने 1992 में इस मूवी के ऊपर काम शुरू किया, फिर 7 साल तक पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, बेसिकली रिसर्च का काम किया फॉर द सेम, और तब जाकर 1999 में फाइनली ये फिल्म आ पाई। इनफैक्ट इसके पहले भी 2 और फिल्में ऐसी थी जिनका नाम यही रखा जा रहा था। सो डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने 1979 में अपनी एक फिल्म अनाउंस की थी बिग बी के साथ, एंड उसका नाम भी सरफरोश होने वाला था, बट समहाउ दैट गॉट शेल्व्ड। और 1994 में बॉबी देओल और पूजा भट्ट के साथ डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने भी सरफरोश नाम की ही एक फिल्म अनाउंस की थी, बट वो भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। And that is why 1999 में सरफरोश नाम की ये फिल्म आ पाई, क्योंकि देखो यार, अगर पहले कोई फिल्म इस नाम से आई होती तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट इश्यू हो जाता ना। तभी मैं कहती हूँ, बड़े पर्दे पे जो फिल्म आप देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं, और वो ढूंढकर मैं आप तक लेकर आती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103, राइट? वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000. वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
1: नहीं तो.
2: आपने नहीं किया है?
1: नहीं.
2: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
1: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
2: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम. मुझे पता चला, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाला, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
1: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
2: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
1: मैंने 2 पैसे निकाले.
2: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
1: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल. ओके
2: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. मुझे क्या पता कौन लेके गया सर.
1: मुझे नोट लेके जा रहा है, उस पर मेरा नाम लिखा है.
2: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं. मुझे नहीं पता आप
1: ठीक बोल रहे हो ना,
2: आप मुझे क्या बताए. आप बदतमीजी से बात मत करिए.
1: सबको लगा दूंगा लाइन में.
2: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर. ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
1: क्या
2: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
1: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
2: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ये पका.
5: हाय दिस इज अनुराधा पौडवाल.
6: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
7: Hi, I am Kajiva Rahman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
8: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 PM onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369 and event by Rami Productions International.
9: Cut, cut.
10: Who that?
9: Jassi.
10: Jassi? Kaunsi wali Jassi?
9: Jassi who has come, auntie ji?
10: Cut, cut. Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1.
11: Mirchi.
4: It's hot. It's hot.

0: यार कभी कभी ना मैं दूसरी कैटेगरी वाली बन जाती हूँ।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: जिंदगी में एक्सेप्टेंस होना काफी ज्यादा जरूरी है यार बाबू मोशाय। मिर्ची पे ट्यून्ड नो आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और आज डिसाइड कर रही हूँ दो टाइप्स ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू कहानी सुनाना, मतलब कोई भी बात बताना जिसमें पहली प्रजाति वाले लोग अगर आपसे किसी बात की शुरुआत करते हैं तो वो उस कहानी को सुनाने में ना इधर उधर भटकते नहीं, शुरुआत और अंत बीच में पूरी बॉडी। लेकिन ये जो दूसरी कैटेगरी है ना, ओहो भगवान ने बड़े फुर्सत में बनाया, क्योंकि इनको एक नहीं चार चार कहानियों के कीड़े एक साथ काट जाते हैं। ये वो लोग हैं जो एक कहानी की शुरुआत करेंगे लेकिन उस कहानी को बयां करते करते अचानक उनको ना उसमें से ही एक सब्सिडरी कहानी याद आ जाएगी, फिर वो उस कहानी पे हॉप कर जाते हैं। एंड दिस लूप फॉर देम इज जस्ट नेवर एंडिंग। और इनके बारे में मुझे इतने अच्छे से इसलिए पता है क्योंकि एक तो झेलती भी हूँ ऐसे लोगों को, और कभी कभी मैं खुद वो इंसान होती हूँ जो सामने वाले को झिला देती हूँ। यार मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: यार, इस घर में अकाउंटेबिलिटी सबके लिए एक जैसी क्यों नहीं है?
1: OTT and chill.
0: ये मेरे दिमाग का सबसे पहला बड़ा सवाल है. मिर्ची पे ट्यून इन हो आप और मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस 20 की यार, क्योंकि इस वीकेंड के बारे में बहुत सारी चीजें ना जंबल्ड अप हो गई हैं मेरे दिमाग में. एक तो सबसे पहले कोई भी आता है अपनी मूवी या सीरीज के प्रमोशन के लिए तो वो सबसे पहले काजी का नाम लेता है. ठीक है, वो बहुत अच्छे कंटेस्टेंट है, लेकिन बहुत सारी गलत चीजें भी तो करते हैं, वो भी तो पॉइंट आउट करोगे ना आप. हाँ ठीक है, उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनके साथ यंग ने और स्काउट ने जिस तरीके का बिहेवियर दिखाया वॉज रॉन्ग, आपने उस चीज को पॉइंट आउट किया, ठीक. लेकिन दूसरी तरफ काजी ने भी बहुत सारी बातें ऐसे बोल रखी है ना कि थूकूंगा तो तू प्रेग्नेंट हो जाएगा एंड व्हाट नॉट, वो बात कहां घूम के जाती है भाई सलमान जी. ऊपर से आपने गुल्लू और कनिका के गेम प्ले की तारीफ कर दी है, जबकि कनिका हैज बीन रियली मीन टू लव, उसने उसके शक्ल को लेकर कमेंट किया है. वहीं दूसरी तरफ गुल्लू से किसी की अगर लड़ाई होती है शुरू तो वो पॉइंट छोड़ के ना सामने वाले को उसकी चीजों के लिए, उसकी इनसिक्योरिटीज के लिए चिढ़ाने लगता है. एंड ऑनेस्टली भाईजान, दिस इज व्हाट बुलिंग लुक्स लाइक. Now let's see, keeping our fingers crossed कि आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीजें थोड़ी सुधर सी जाएं, वरना तो मेरे जैसे और भी लोगों के दिमाग में ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि भाई कहीं बिग बॉस 20 रिग्ड तो नहीं है. बाकी फिलहाल आप OTT पे क्या देख रहे हैं, do let me know about that. मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं. Till then, stay tuned, it's hot.

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है

0: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। भाई, मच लव्ड फिल्म हनुमान अंश अब तेलुगु ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, बिकॉज 9th ऑफ सितंबर को ये फिल्म वहां भी रिलीज हो चुकी है। सो डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने ये स्टेप पब्लिक डिमांड पे ही लिया था, एंड नाउ आई एम श्योर द पब्लिक इज रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। मुन्ना भैया और कंपाउंडर एक बार फिर साथ आ रहे हैं। हां जी, दिव्येंदु और अभिषेक बैनर्जी की बात कर रही हूँ, जो एक नए वेब सीरीज के लिए साथ नजर आएंगे। वेल, ये वेब सीरीज एक एम्पायर स्टाइल ड्रामा होगी, एंड गैंगस्टर सेटिंग से इस बार चीजें यहाँ अलग होंगी। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। अनीत पाडा की अपकमिंग फिल्म शक्तिशालिनी और शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग एक ही दिन रिलीज होने वाली थी, यानी कि क्रिसमस ईव पर। बट अब रिपोर्ट्स हैव इट दैट दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये अगली फिल्म शक्तिशालिनी को लेकर मेकर्स अब नया रिलीज डेट प्लान कर रहे हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन मार्च 2027। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो कब से सोच रही थी यार कि किंग के ऑपोजिट क्यों ही कोई और फिल्म लानी है। वेल, मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुणाल खेमू, अपने कॉलेज डेज में आपने सबसे बढ़िया जुगाड़ कौन सा किया?
2: हम लोग थिएटर जब करते थे कॉलेज में, ये तो नॉर्मल जिंदगी थी उस वक्त, लिमिटेड पॉकेट मनी होती थी, चल चल के पैसे बचाए जाते थे, रिक्शे के कैसे शेयरिंग में कभी किसी को धोखा देके भाग लेते थे।
1: कुणाल खेमू वो इंसान आज भी आपके पीछे भाग रहा है। व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Hi, this is Anuradha Podwal.
4: कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला।
5: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
4: धूल से पर्दा कीजिए।
6: Hi, I am Kajiva Rahman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
7: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6000-4369, an event by Rami Productions International.
8: खट खट।
9: कौन है?
8: इशांत।
9: इशांत कौन?
8: इशांत गदाधारी भीम इशांत।
9: खट खट, who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

0: सल्तनत।
1: चूड़ियों पे तो बहुत गाने थे, संजू राठौड़ ने इसे बैंगल्स कर दिया। बस मौसम भी ऐसे ही गर्मी से थोड़ा कोल्ड कोल्ड वेदर कर दे तो मजा आ जाए। फिलहाल अभी भी गर्मी बरकरार है दोस्त, पर घबराना नहीं है। आ गया मस्त मौला गौरव एंटरटेनमेंट की गर्मी लेकर। अब आपके साथ अगले चार घंटे पूरी बातें बताएंगे। सबसे पहले खास बात कि वो नाइट रेस जो मोटो जीपी की अपने कतर में होने वाली है वो कैसे होने वाली है, आप कहां टिकट्स बुक कर सकते हो, या फिर कतर में कौन कौन से बड़े एग्जीबिशन अब ओपन है आपके लिए, एंड साउथ कोरिया वाले अब हमारे कतर में कैसा बड़ा फेयर लेकर आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको आज यहीं पता लगेगा। कान खोल लो, मिर्ची लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, क्योंकि मस्त मौल और भाभी भी लेकर आ गया शाम शानदार। और जब शाम के चार बज जाए तो करक के साथ शाम और बेहतरीन होती है, और वॉल्यूम थोड़ा हाई हो जाए तो एनर्जी खुद ब खुद हाई हो जाती है। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La
1: virba la burga. Mirci, burga. Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
5: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
6: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
7: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
8: Hi, this is Anuradha Podwal.
9: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
10: Hi, I am Kajiva Rahman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
11: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 PM onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369 and event by Rami Productions International.
12: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
13: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
14: कैसे रुक सकता है?
15: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
16: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: कंगना कंगना।
1: आपको भी स्पीड एडन रश और हाई स्पीड ड्रामा पसंद है तो मोटो जीपी है ना।
2: मस्त मौला गौरव।
1: रफ्तार के शौकीन हो, आपके लिए मस्त मौला गौरव ले आया है वो बात जो अपने कतर में होने जा रही है। यस, मोटो जीपी कतर एवेज ग्रैंड प्री ऑफ कतर 2026 की तारीख आ गई है।
3: #974
1: हमारे कतर में होने जा रहा है मोटो जीपी कतर एवेज ग्रैंड प्री ऑफ कतर 2026। कह सकते हैं ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मोटरसाइकिलिंग रेस है जिसकी सीरीज यहां भी अब होने जा रही है, और ये इकलौता है जो नाइट रेस के रूप में जाना जाता है, यानी कि कुल मिलाकर मोटो जीपी की उस नाइट रेस का मजा लेना है जो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट होती है। उसके लिए आपको मोटो जीपी के उस कैलेंडर की तरफ बढ़ना पड़ेगा जहां पर हमारे कतर का भी नाम है। यस, एंड दिस 6th of November to 8th of November लुसेल इंटरनेशनल सर्किट पर होने वाली है ये ओनली नाइट रेस ऑफ द सीजन। तो मोटो जीपी के शौकीनों, अगर ओनली नाइट रेस ऑफ द सीजन देखनी है, दुनिया किसी भी कोने में आपका दोस्त यार जो कहता है यार मुझे ना ये चीज बहुत बुलाती है, तो आप उसको कतर बुला लो और बता दो ओनली नाइट रेस ऑफ दिस सीरीज इज गोइंग टू हैपन इन कतर। सो ऐसे में मस्त मौला गौरव बस इतना ही कहेगा हबीबी कम टू कतर, क्योंकि मोटो जीपी हो या फिर मोटो से रिलेटेड कोई और एक्टिविटी, सब कुछ बेस्ट पूरी दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो हमारा कतर। वेलकम टू कतर, मिर्ची इट्स हॉट।
4: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: यार मैंने क्लास के टॉपर से कुछ तो सीख ही लिया। कि किसी भी चीज की प्रिपरेशन कैसे पहले से करनी चाहिए। अब देखिए फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान होंगे और गोल्ड प्राइजेस कितने हाई हैं। मैंने भाई राइट टाइम पे गोल्ड में इन्वेस्ट करके अपने लिए फायदा बचा लिया। अब आपकी बारी है। हाँ जी, गोल्ड रेट जब नीचे गए तो मैंने फटाफट इन्वेस्ट किया, लेकिन फिलहाल आप भी कर सकते हो। अगर राइट नाउ मैं बात करूं तो हमारे कतर में अल फरदान एक्सचेंज में क्या चल रहा है गोल्ड रेट बताएंगे।
1: गोल्ड अपडेट।
0: यस, अल फरदान एक्सचेंज जो हमारे कतर में लेकर आते हैं पैम्प, जो कि स्विस सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड की गारंटी देता है। वो पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फौशना बार आपको मिलेगा 571 कतरी रियाल में। पैम्प का 5 ग्राम गोल्ड लेडी फौशना बार एट 2672 कतरी रियाल। पैम्प 10 ग्राम गोल्ड लेडी फौशना बार एट 5276 कतरी रियाल। पैम्प का 1 औंस गोल्ड लेडी फौशना बार एट 16307 कतरी रियाल। एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार 60537 कतरी रियाल। ये है प्राइजेस। अगर आप आज इन्वेस्ट कर लेते हो, अभी फेस्टिवल आने में थोड़ा सा टाइम है, इससे पहले कि और दाम ऊपर भाग जाए, आप अपने लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लो और मस्त मौला गौरव को थैंक यू बोल दो जिसने हमेशा आपके फायदे की बात की। दिस वॉज अल फरदान एक्सचेंज गोल्ड रेट्स।
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAMP's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAMP gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

0: अभिजीत की आवाज में बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, और ऐसा गाना कौन सुनाता है। लेकिन बड़ी मुश्किल है, अक्टूबर का महीना है, 15th के आसपास हम आ गए, आधा महीना निकल गया, लेकिन सूरज चाचू मानने को तैयार ही नहीं है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: अब देखिए, हम बारिश की उम्मीद तो कर रहे थे कि 14 तक शायद हो जाएगी, आसमानों में हल्के फुल्के बादल दिखाई भी पड़ रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गर्मी जबरदस्त तरीके से 37 डिग्री सेल्सियस दिन का मैक्सिमम, मिनिमम अराउंड 30, पर बड़ी बात यह है ह्यूमिडिटी इसमें आग में तेल झोंकने का काम कर रही है 48% के साथ, जो कि रात में काफी ऊपर भी हो जा रही है। कल तो हम वॉक करने गए, इससे पानी पानी हो गया, इतना पसीना पूछो मत, लेकिन अगर आप निकल रहे हैं तो पानी की बोतल साथ जरूर रखिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी में जब आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो तो आपको हमेशा बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीते रहना है। 89.6 मिर्ची 1 पर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सो अली खान, हमने सुना है कि सैफ एंड कुणाल बोथ आर ग्रेट कुक्स, आप क्या बना सकते हो?
3: थियोरी में तो मैं भी दाल चावल बना सकती हूँ, थियोरी में। कभी मतलब वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिला है, लाइक इट हैजंट गॉट दैट बैड कि मुझे किचन में जाने की जरूरत हुई है अब तक। कुणाल कुक्स वेरी वेल एंड भाई कैन मेक वेरी गुड स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड पास्ता।
2: दैट वाज सोहा अली खान ऑन बॉलीवुड बोल्डर। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
5: Mere bete aayenge. Mere Karan Arjun aayenge.
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अब एमओ सी आई में भी जी पे एंड एप्पल पे होगा। गौरव, एंड यही बताना चाहता हूँ कि अब कतर की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने आपके लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एंड स्मार्टफोन एप्लीकेशन पर फीस पे करने का तरीका आसान कर दिया है। अब आप एप्पल पे और गूगल पे से भी पे कर सकते हो। यस, हम आपको बता दें इसका मेन मकसद यही है कि जो ट्रांजेक्शन है वो ज्यादा फास्ट हो जाए, लोगों को इजी हो एंड कन्वीनियंट इतना रहे कि लोगों को सोचने नहीं पड़े, बस मोबाइल के एक क्लिक से काम हो रहा है। हाँ जी, अब सोचिए बिना किसी झंझट के आप आसानी से एमओसीआई के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आराम से अपने स्मार्टफोन एप्लीकेशन पर जाकर पे कर सकते हो। बड़ी बात यह है कि सेकेंड्स के अंदर आपका ये काम हो जाएगा, और उसके लिए आपको कोई कार्ड शार्ड भी नहीं रखना है। जीपे कर दो या फिर एप्पल पे कर दो और आपका पेमेंट डन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डिजिटलाइजेशन के इस दौर में ये एक नया पेमेंट ऑप्शन ऐड कर दिया है जो आपकी और हमारी सहूलियत के लिए है। तो अगली बार कार्ड शार्ट का झंझट खत्म, एप्पल पे गूगल पे ही वो काम कर देगा। मैं कह रहा हूं दोस्तों, एक दिन आ जाएगा जब करेंसी हम कहा करेंगे नोट वोट ना, कि ये एक जमाने में हमारी जेबों में होता था, आज सिर्फ और सिर्फ इतिहास पढ़ने को मिलता है। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट। 89.6
1: मिर्ची

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana, rabana. Burka, burka. Na wiatr bala burka. Mirci, burka.
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं। राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो
2: हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
2: नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
2: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
2: राज जी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा।
1: मैं अपने फ्रेंड्स से उनको भी भेजूंगा।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Hi, this is Anuradha Podwal.
5: Koi na koi chahiye, pyar karne wala.
6: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
5: Bhool se parda kijiye.
7: Hi, I am Kajiva Raman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
8: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 PM onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369 and event by Rami Productions International.
3: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
9: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
10: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback.
11: Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
9: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
12: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
13: खटखट,
14: who there?
13: बनता,
14: बनता हूँ।
13: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
14: खटखट, who there?
3: Only on 89.6 Mirchi One.
15: Mirchi,
3: it's hot.
16: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर.
17: Oh my God, this is original.

दिला दू घर चंडीगढ़ में रियल स्टेट एजेंट जैसा ये गाना सुनाया किसने? काले उमड़ते घुमड़ते बादल, क्या कल बारिश होगी? 14 अक्टूबर तक की एक तरह से प्रेडिक्शन की थी कतर म्यूचुअल डिपार्टमेंट ने, और ये बादल बता रहे हैं कि मामला बन सकता है। वैसे दूर दराज से दिख रहा है, लेकिन सबके बीच मस्त मौला गौरव आपके साथ है, तो इम्पोर्टेंट बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात ये कि एक आखिरी बार भाई के साथ कॉफी पीते नजर आने वाले हैं करण जौहर। यस, उनका सीजन कॉफी विद करण का ये आखिरी सीजन है, एंड आई एम श्योर एक यादगार सीजन बनाने की कोशिश वो करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन गेस्ट को बुलाएंगे। लेकिन कॉफी विद करण का लास्ट सीजन चल रहा है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि करण जौहर एक फिल्म में नजर आए थे, अगर आपको जीतने मेगा बॉलीवुड कॉन्सर्ट के पास जो रैमी प्रोडक्शन इंटरनेशनल हमारे कतर में लेकर आए, तो हमारे सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। और सवाल ये है, याद रखिएगा, सवाल ये है, करण जौहर किस फिल्म में नजर आए हैं? हाँ जी, शाहरुख खान के साथ एक फिल्म में नजर आए थे, अगर आपको याद है। 5000196 नंबर है, जल्दी जल्दी वॉइस नोट में अपने जवाब भेज दो कि हाय गौरव, मैं ये बोल रहा हूँ और शाहरुख खान के साथ करण जौहर फलानी डिमकानी फिल्म में नजर आए थे। 5000196, शाहरुख खान के साथ करण जौहर किस फिल्म में नजर आए थे? मेगा बॉलीवुड कॉन्सर्ट के पास जीतने वालों, ये सवाल का जवाब भेज डालो, जितनी जल्दी हो सके बता लो। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: संध्या मृदुल अरशद वारसी, पिक्चर का नाम नहीं याद आएगा लेकिन देखिए गाना कितना हिट हुआ था। वैसे इसका नाम था वैसे भी होता है पार्ट टू, मुझे अच्छे से याद है। एक गाना और था सजना भी जा। फिलहाल के लिए बस फॉलो, गौरव ने आपसे कहा था जवाब भी दे जा। और सवाल ये था कि करण जौहर शाहरुख खान के साथ सबसे पहले किस फिल्म में नजर आए थे। और बात करण जौहर की इसलिए उठाई मैंने क्योंकि करण जौहर अपने कॉफी विद करण का लास्ट सीजन लेकर आने जा रहे हैं। ग्रैंड फिनाले सीजन होगा, इसके बाद ये कॉफी किसी के साथ नहीं पियेंगे सेलिब्रिटी के रूप में इंटरव्यू लेते हुए। इन सब के बीच सवाल का जवाब आ गया है।
1: करण जौहर शाहरुख खान के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी में नजर आए थे।
2: हाय गौरव, शाहरुख खान के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
3: हाय गौरव, गुड इवनिंग, मुकुल हियर फ्रॉम जौहर डीडीएल जी में नजर आए। थैंक यू।
4: हाय गौरव, गुड इवनिंग, दिस इज भारत स्पीकिंग, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
5: हाय गौरव, दिस इज उज्जवल हियर और ये मूवी है डीडीएल जी।
6: गुड इवनिंग गौरव जी, करण जौहर सबसे पहले जिस मूवी में नजर आए थे शाहरुख खान जी के साथ, उसका नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। थैंक यू।
7: गुड इवनिंग गौरव, दिस इज मोहम्मद फयाज अहमद, द राइट आंसर इज डीडीएल जी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
8: हेलो गौरव, दिस इज एमएसके फ्रॉम पाकिस्तान। शाहरुख और करण जौहर एक फिल्म में नजर आए थे डीडीएलजे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। थैंक यू
0: भाई, 100% सही जवाब आया है, मतलब याददाश्त तो सबकी जबरदस्त है। भाई सोचिए 1994 में ये फिल्म आई थी और तब से लेकर आज तक अगर दिमाग में वो तस्वीर बैठेगी करण जौहर शाहरुख एक साथ थे, 32 साल हो गए दोस्तों। मस्त मॉल गौरव, फिलहाल लकी विनर का नाम अब से अगली देर में बताएगा एंड बहुत लोगों से यही कहेगा उदास नहीं होना यार, जीत भले ही एक दो सकते हैं लेकिन आप ट्राई तो अभी और कर सकते हैं। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
9: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: नेशनल अवार्ड विनर अजय देवगन, क्या आपको हमेशा से एक्टिंग करनी थी?
3: इट वॉज नेवर एक्टिंग, इट वॉज ऑलवेज आई यूज्ड टू मेक माई ओन फिल्म्स. आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, आई यूज्ड टू एडिट, आई यूज्ड टू डायरेक्ट, आई वॉज अ कैमरामैन, आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर एक्टिंग.
2: व्हाट कैन आई से अजय देवगन, आई एम जस्ट ग्लैड कि फूल और कांटे हैपेंड. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
6: Huh? Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
7: Yes, Bebo.
6: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
7: Yes.
6: कैच क्या है?
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
6: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच.
7: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
8: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
9: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
10: बहुत कुछ होगा.
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

है जवानी है दीवानी, गाना खत्म हो गया जानी। हाँ जी, मस्त मौला गौरव आपके साथ है। और इतना ही कहना चाहता हूँ जी कि जो भी हो जाए, हमारे पास अगर पैसे हैं तो उसका अच्छा रेट मिल जाए, और क्या चाहिए जिंदगी में। एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीस 26 रुपए 11 पैसे हैं। यस, 26.11 इंडियन रुपीस। उसके बाद लंकन रुपीस की बात करें अगेंस्ट 1 कतरी रियाल, तो जो यहां आपको मिलेंगे 90.86 लंकन रुपीस। इसके बाद जनाब अगर हम पाकिस्तानी रुपीस की तरफ बढ़े, वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.12 पाकिस्तान रुपीज वाहिद कतरी रियाल के बदले आपको मिलने वाले। वहीं तपाई को नेपाली रुपीज का रेट था जाजो 41.71 को लेट चो जाई। हाँ जी भाई, नहीं 41.71 को रेट छो, अगर घर भेजने लाइट से सही टाइम छो भाई। इसके बाद बांधो बांग्लादेशी टका बात करेगा दादा, एक्टा कतरी रियाल के बदले अभी राइट नाउ आपको मिलने वाला है 33.81, तो 33.81 बांग्लादेशी रेट छिलम। मस्त मोलो गौरव आपके साथ, बाड़ी ते पार्टी डाओ, अगर पैसा है जल्दी घर भेजवाओ मिर्ची, इट्स ऑल।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vidva la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Could I speak to Manish, please?
1: Speaking.
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
1: ओके
2: मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को। मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में। यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके।
1: करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा
2: हूँ। तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था। तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। आप हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार। मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: GWM के मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती एंड फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
5: 89.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्तवाला गौरव, और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में, और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं। यू गाइस एंजॉयड इट?
6: It was great fun. Thank you, Mirchi. Thank you, GWM.
7: Thank you, Mirchi, for the GWM recharge. It was really fun, especially the magic show.
8: And show Gaurav, Afin, thank you very much.
9: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
10: Yes, Bebo.
9: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
10: Yes.
9: Catch kya hai?
10: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
9: I still can't believe it. No catch.
10: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
4: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
11: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cash back.
12: Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
4: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
13: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12th से 14th अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
14: कट कट।
15: हू दैट?
14: जाहिर।
15: जाहिर, जाहिर हूँ।
14: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
15: खट खट, हू दैट?
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: आस्था गिल, दिव्य कुमार, सचिन सांघवी की आवाज में ये गाना आपके कानों तक किसने पहुंचाया? एंड आपसे मैंने बॉलीवुड मेगा कॉन्सर्ट के पास जीतने के लिए एक सिंगल पास किसी को इस घंटे में देने जा रहा हूँ, एक सवाल पूछा था और सवाल ये था, सोनाली बेंद्रे आपको बताना है कि वो आमिर खान एंड हमारे सलमान खान के साथ किन फिल्मों में नजर आई थी।
1: हाय, मैंने मिस किया सलमान, सोनाली बेंद्रे देखो सलमान खान की फिल्म में हम साथ साथ में है और आमिर खान के साथ है, सो सरफरोश मूवी में साथ में काम करे सो है।
2: हाय गौरव, हाउ आर यू, दिस इज केपी वशिष्ठ, सलमान खान के साथ हम साथ साथ हैं और आमिर खान के साथ सरफरोश। थैंक यू,
3: थैंक यू, गुड इवनिंग। सोनाली बेंद्रे सलमान खान की फिल्म के काम के हम सब साथ है, आमिर खान के साथ सरफरोश है। थैंक यू।
4: हेलो माय मोस्ट मौला भाई, गौरव भाई, कैसे हो आप? दिस इज योर रेगुलर लिसनर लाल मोहम्मद खान और आपने जो सवाल पूछा है, सोनाली बेंद्रे जी ने आमिर खान के साथ सरफरोश मूवी में काम किया था और सलमान खान के साथ हम साथ साथ है मूवी में काम किया था रेडियो में। जी इट्स शॉर्ट।
5: गौरव जी, एम एस के फ्रॉम पाकिस्तान। सोनाली बेंद्रे आमिर खान के साथ सरफरोश मूवी में आई थी और सलमान खान के साथ हम साथ साथ में।
0: और एक जन का जवाब मैं सुना नहीं रहा हूँ, पढ़ के बता दे रहा हूँ, ये यूसुफ भाई टॉपर है, हर बार जवाब देते हैं। इन्होंने एक कदम आगे बढ़कर, गौरव भाई शाहरुख खान के साथ भी फिल्म में काम किया है, इंग्लिश बाबू देसी मैन, बिल्कुल सही जवाब सबके। लेकिन लकी विनर तो कोई एक ही बन पाएगा, एमएसके भाई फ्रॉम पाकिस्तान, आपको मिल रहा है इस कॉन्सर्ट का पास, जाइएगा देख कर आइएगा, गौरव को बोलिएगा कि भाई तुम्हारी वजह से अनुराधा पडवाल विनोद राठौड़ को लाइव सुना और जूनियर कुमार सानू के साथ गुनगुनाए 89.6 मिर्ची वाले छा। ओह गॉड, वन मोर।

नया ककड़ गुरु रंधावा का ये मैशअप अलग ही फीलिंग देता है यार। मस्त मौला गौरव। एंड इन सब के बीच मस्त मौला गौरव बात करेगा उस हॉस्पिटैलिटी कतर की, वो जो हमारे कतर में इस वक्त चल रहा है। एंड दुनिया भर से ढेर सारे लोग आए हॉस्पिटैलिटी कतर का हिस्सा बनकर, ताकि आप आने वाले दिनों में अगर हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, दिस इज वन सच प्लेस जहां कर आप वहां नेटवर्किंग कर सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनकी कंपनी के ओनर से मिल सकते हैं। एंड दिस इज वन सच प्लेटफॉर्म जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं दोस्त। लेकिन अब वो हमारे कतर में जितनी जल्दी हो सके पहुंचिए। यस, डीसीसी में ये कल लास्ट डे है हॉस्पिटैलिटी कतर 2026। 120 लोकल एंड इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स यहां पर हैं, हिस्सा बनिए इस इवेंट का। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं, ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपके लिए आगे के और ढेर सारे रास्ते खुल रहे हैं। 89.6 मिर्ची 1 पर ये बात मस्त मौला गौरव ने याद दिलाई है। कल आप लास्ट डे जा सकते हो। यस, देर रात 9 बजे तक ये इवेंट चल रहा है। मिर्ची इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: देखिए कौशल, आपको देख के लगता नहीं है आप किसी चीज से डरते होंगे, डर लगता है आपको?
3: पानी के अलावा सांपों से बड़ा डर लगता है, डर से ज्यादा रिपल्स हो जाता हूँ मैं, मुझे एकदम
4: वही
3: झंझरी सी मच जाती है एकदम शरीर में।
2: जैसे झंझरी बोला ऐसे मुझे अचानक से वो सेंसिटिव टूथपेस्ट झंझनाहट। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: It's back, LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry, offer valid till 19th October.
6: Hum bhi woh hain jo kabhi kisi ke peeche nahi khade hote. Jahan khade ho jate hain, लाइन वहीं से शुरू होती है।
5: और हम जहां चल जाते हैं, बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: चलिए जी, जो कभी खिलाड़ी था अब वो कोच बन रहा है। बात करूं मैं दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट एंड बैटिंग कोच युवराज सिंह की। यस, पहली बार वो फाइनली कोच बन गए हैं। यूवी पाजी यार तुसी कमाल हो, और मुझे पूरी उम्मीद है इससे दिल्ली में बदलाव तो आएगा। वैसे एक टाइम था 2015 का जब दिल्ली ने उन्हें 16 करोड़ में उस आईपीएल सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में चुना था। हालांकि उतना परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बट आई एम श्योर एज अ कोच इज वन ऑफ द बेस्ट। एंड इनका स्टूडेंट है अभिषेक शर्मा, देख लो क्या कर रहा है। तो आई एम श्योर दिल्ली बहुत कमाल करेगी। इन सबके बीच बाबूमा की टीम कमाल नहीं कर पाई और अपने घर में ऑस्ट्रेलिया से 214 रनों से हार गई। यस, और बड़ी बात यह है कि बाबूमा की कैप्टनसी में पहली बार कोई टेस्ट मैच हारा है साउथ अफ्रीका। यस, बड़ी बात है यार कि मतलब ऑस्ट्रेलिया ने उनके घर में उन्हें हराया, और ये एक बड़ी चीज है। इन सब के बीच अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ हारा हुआ टेस्ट ड्रॉ करा दिया, और ये ना आखिरी जो होता है ना आखिरी खिलाड़ी वही खतरनाक होता है, और वही हुआ। 8 घंटे 34 मिनट बल्लेबाजी करते रहे सदकुल्ला, और 9 चौके और 3 छक्के लगाकर अफगानिस्तान को इस हारे मैच से ड्रॉ की तरफ किया। एक खिलाड़ी जो चाहे वो कर सकता है। वेल प्लेड टीम अफगानिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश इस मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखा था, लेकिन आखिरी भाई आखिरी टाइम पर ऐसी बैटिंग करके झिला दिया और ड्रॉ करा दिया, जो अनबिलीवेबल लग रहा था। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इस मैचेस में इसका भी नाम मैं रखूंगा। 89.6 मिर्ची 1 पर ये थी खेल खबर। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: शाश्वत सजदे मधुबंती बख्शी की आवाज में। शरारत नहीं साहब, हम शराफत सिखाते हैं क्योंकि नाम ही हमारा
1: मस्त मौला गौरव।
0: और भाई जिंदगी में अगर सीखना है तो अच्छी अच्छी शराफत सीखिए, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वैसे फिलहाल आज एक जबरदस्त चीज हुई हमारे कतर में। यस, हम सभी के लिए कतर रेसिडेंट्स के रूप में आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज हमारे कतर के His Highness Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani जी ने सूरा काउंसिल का 55th एनुअल सेशन जो है उसका इनॉग्रेशन किया। इस दौरान बहुत सारी बातें बोली गई एंड कुछ बड़े डिसीजन आने वाले टाइम में जो होंगे कतर की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है वो लिए गए हैं। और तो और इस ओकेजन पर His Highness Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani डिग्नेटरीज और की लीडर्स भी जो कतर के हैं सब मौजूद थे। और सूरा काउंसिल ने हमेशा से हमारे कतर की ग्रोथ के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए नई पॉलिसीज कैसे होना इस पर एक तरह स्ट्रॉन्ग पिलर सेट करता है। और जब बात लीडरशिप की आए तो नो डाउट हमारे एमिर His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani वो सबसे आगे लीड कर रहे होते हैं और वो कतर को किस तरह ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। इस दौरान ट्रिब्यूट भी पे किया गया फादर एमिर को, लेट फादर एमिर। एंड मस्ट मौला गौरव इतना ही कहेगा, एज अ रेसिडेंट वी फील प्राउड कि हम इस देश में हैं जहां पर हर वक्त हमारे लिए कोई ना कोई हमारे बारे में सोचता है एंड हमारी बेहतरी कैसे हो इस पर फैसले लिए जाते हैं। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burka, burka. La vieja la burka.
2: Mirchi, burka.
3: Hello.
4: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000. वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
3: नहीं. तो
4: आपने नहीं किया है?
3: नहीं.
4: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
3: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
4: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए. कम से कम मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
3: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
4: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
3: मैंने 2 पैसे भी निकाले.
4: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
3: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल. ओके
4: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
3: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
4: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं. मुझे नहीं पता. आप मुझे क्या बताए? आप बतमीजी से बात मत करिए.
3: सबको लगा दूंगा लाइन में.
4: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएंगे. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर. ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
3: क्या
4: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
3: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
5: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में. 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
4: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
8: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी. डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस. मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ. तो मार्क योर कैलेंडर 12th से 14th अक्टूबर DECC दोहा. फूड कतर 2026. कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो.
9: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
10: Yes, Bebo.
9: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
10: Yes.
9: Catch kya hai?
10: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
9: I still can't believe it. No catch.
10: Catches sirf matches mein hote hain, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
11: Our business is our business. None of your business.
12: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
13: Qatar का number one radio station.
14: 89.6
15: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: आपको भी स्पीड एडन रश और हाई स्पीड ड्रामा पसंद है तो मोटो जीपी है ना। रफ्तार के शौकीन हो आपके लिए मस्त मौला गौरव ले आया है वो बात जो अपने कतर में होने जा रही है। यस मोटो जीपी कतर एयरवेज ग्रैंड प्री ऑफ कतर 2026 की तारीख आ गई है। #9749749 हमारे कतर में होने जा रहा है मोटो जीपी कतर एयरवेज ग्रैंड प्री ऑफ कतर 2026। कह सकते हैं ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मोटरसाइकिलिंग रेस है जिसकी सीरीज यहां भी अब होने जा रही है और ये इकलौता है जो नाइट रेस के रूप में जाना जाता है, यानी कि कुल मिलाकर मोटो जीपी की उस नाइट रेस का मजा लेना है जो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट होती है। उसके लिए आपको मोटो जीपी के उस कैलेंडर की तरफ बढ़ना पड़ेगा जहां पर हमारे कतर का भी नाम है। यस एंड दिस 6th of November to 8th of November लुसाइल इंटरनेशनल सर्किट पर होने वाली है ये ओनली नाइट रेस ऑफ द सीजन। तो मोटो जीपी के शौकीनों अगर ओनली नाइट रेस ऑफ द सीजन देखनी है, दुनिया किसी भी कोने में आपका दोस्त यार जो कहता है यार मुझे ना ये चीज बहुत बुलाती है, तो आप उसको कतर बुला लो और बता दो ओनली नाइट रेस ऑफ दिस सीरीज इज गोइंग टू हैपन इन कतर। सो ऐसे में मस्त मौला गौरव बस इतना ही कहेगा हबीबी कम टू कतर, क्योंकि मोटो जीपी हो या फिर मोटो से रिलेटेड कोई और एक्टिविटी सब कुछ बेस्ट पूरी दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो हमारा कतर। वेलकम टू कतर मिर्ची थॉट
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

देखा आपने लापरवाही का नतीजा है जी, जो चीज कुछ दवा के डोसेज में ठीक हो जाती है उसके लिए आप हफ्तों झेल रहे हैं। ये घरेलू नुस्खों के चक्कर में ना पड़िए भैया, मौसम बदल रहा है, खांसी वासी सूखी है या फिर घर में ऐसा कोई है जो बीमार पड़ रहा है, बुखार आ रहा है जा रहा है, आपको सिर्फ एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेनी है एंड बस आप ठीक हो जाएंगे। मेरा विश्वास मानिए, अक्सर होता है कि हम घरेलू नुस्खों में रह जाते हैं और उस चक्कर में प्रोलॉन्ग करते हैं उन चीजों को जो शायद एक दो दिन में ठीक हो जाए। तो भाई मौसम बदल रहा है और ऐसे में अगर आपको एक डॉक्टर क्लिनिक की विजिट लेनी पड़े तो कोई बुराई नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, यस, मेशाफ में, वखरा में या फिर बरवा सिटी में आप जाकर अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, खुद को प्रॉब्लम दिखा सकते हैं। क्योंकि मेरा यह मानना है वेदर चेंज के टाइम पे हम घरेलू नुस्खों का जो यूज कर रहे हैं ना वो शायद हमारे यहाँ की बीमारियों को प्रोलॉन्ग कर सकता है। इससे बेटर है डॉक्टर के पास जाओ, क्लिनिक में उनसे मिलो एंड कुछ दवा के डोजेस चीजें ठीक हो जाएंगी। कभी कभी जरूरी होता है कि डॉक्टर के पास जाओ वैसे ही सुकून मिल जाता है कि आप तो ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर साहब ने देख लिया। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ मिर्ची थॉट।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
9: कौन है?
10: स्टेन।
9: स्टेन कौन?
10: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को। मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
11: खट खट, who that?
12: Only on 89.6 Mirchi 1.
13: Mirchi, it's hot.

Energie.

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: आखिरी क्वार्टर साल का और खूब सारे इवेंट हमारे कतार में। गौरव आपको बता दे, इवेंट पे इवेंट लाइंड अप है। सबसे पहले अगर बात करें तो ये देखिए, अब मोटो जीपी ग्रांड प्री आ गया, इसके बाद फॉर्मूला 1 कतर ग्रांड प्री होगा, उसके अलावा कतर का बोट शो, और इस बीच बहुत सारी चीजें जिसमें बबल आइलैंड भी है बच्चों के लिए। ये सब कुछ बन रहा है हमारे कतर में, एंड आपको अब इसके लिए अलग अलग पैसे जुटा के रखने ताकि हर इवेंट का हिस्सा बनिए। अब जैसे 30 अक्टूबर की बात कर ले, बताइए हमारे अनुराधा पौडवाल जी आ रही है, उसके अलावा विनोद राठौर, साथ में जूनियर कुमार सानू, इनकी टिकट भी आप बुक कर सकते हो वर्जिन प्लेटिनम लिस्ट, एंड इसके अलावा क्यू टिकट्स के साथ साथ एससीटी स्नूनू पर मेगा बॉलीवुड कॉन्सर्ट है। 90s के वो नगमे जो अब तक हमने सिर्फ सुने हैं, अब उन सिंगर्स के साथ गुनगुनाने की बारी आ गई है, तो साथ में मस्ती करेंगे। तब तक ले अलविदा ले रहा है मस्मोलो गौरव, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में, एंड अगर टाइम हो तो हॉस्पिटैलिटी कतर के इवेंट में जरूर होकर आइए जो DECC में कल लास्ट है। 89.6 मिर्ची 1 से मी सिंह टरबा, मां सलामा हबीबी बुकरा अनाई जी, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। और ये जो मोहब्बत और इंतजार का एहसास है, ये हमेशा से इंसानी जज्बात का हिस्सा रहा है। चाहे वो मोहब्बत को बयां करता हुआ कोई नगमा हो या एक सादा खत जो दूरियों के बावजूद रिश्तों का ताल्लुक गहरा कर देता है। और खत लिखने की कला आजकल के वक्त में तो दोस्त देखो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, मगर उस आर्ट के बारे में बशीर बद्र साहब का मेरा एक बड़ा पसंदीदा शेर है। कहते हैं कि खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, वो हाथ की जिसने कोई जेवर नहीं देखा। आए हाय, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में जो आर्ट के कद्रदान आज भी बचे हैं, उनके चेहरे पे ये शेर मुस्कान ला देगा। बहरहाल सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirci, it's hot.
1: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: भाई साहब, श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल?
3: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है, ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है, अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है
4: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
2: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
7: यस बेबो।
6: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
7: यस।
6: कैच क्या है?
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ, डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स, और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
6: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
7: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
8: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
9: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
10: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और अब वक्त आ चला है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: कि आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर अजी शायर क्या खुदाए सुखन से मीर तकी मीर से लफ्जो मानी के जादूगर बेमिसाल शायर मीर तकी मीर को अभी 300 साल पूरे हुए 20 सितंबर को और मीर साहब उर्दू गजल के वो प्रेत हैं कि जो उसकी जकड़ में आ जाता है जिंदगी भर वो उसके अधीन रहता है। मीर ने उन लोगों से भी प्रशंसा पाई जिनकी अपनी शायरी मीर से बहुत अलग थी। उनकी शायराना अजमत को इससे बढ़कर क्या सबूत होगा कि जमाने के मिजाजों में बदलाव के बावजूद उनकी शायरी की महानता का सिक्का हर दौर में चलता रहा। मीर का आजकल मेरा एक बड़ा पसंदीदा शेर चल रहा है, कहते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। कितनी दारदार बात कितनी आसानी से कह जाती। दिल की बीमारी होती ऐसी है कि जान और सुकून लेके ही जाती है। खैर मुलायजा फरमाएं अगली गजल सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot. अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून.
1: कटकटे
2: अबे कौन है?
1: उत्तपा.
2: उत्तपा कौन?
1: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
2: खटखट हो दा.
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और इंसान का मूड भी ना अगर रेगुलेट ना किया जाए तो एक बड़ी इम्पल्सिव चीज बन जाता है, पल में बदल जाए। तभी कहते हैं कि दिल के घोड़े को हमेशा लगाम लगा के रखनी चाहिए। कैसर शमीम साहब का एक बड़ा बेहतरीन शेर है, कहते हैं कि मौसम अजीब रहता है दिल के दयार का, दयार मतलब शहर, मौसम अजीब रहता है दिल के दयार का, आगे है लू के झोंके भी ठंडी हवा के बाद। है ना खूबसूरत शेर। पढ़ते हुए मुझे ये भी याद आता है कि गर्लफ्रेंड्स के मूड को भी अगर डिस्क्राइब करना हो तो इससे बेहतर शेर और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको अपनी मोहतरमा पे कोई शेर ध्यान आता हो तो लिख भेजे मेरे इंस्टा NFB मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। अगली बार सुना दिया जाएगा और क्या। मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Bollywood bol dal, Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: कुणाल खेमू, अपने कॉलेज डेज में आपने सबसे बढ़िया जुगाड़ कौन सा किया?
4: हम लोग थिएटर जब करते थे कॉलेज में, ये तो नॉर्मल जिंदगी थी उस वक्त, लिमिटेड पॉकेट मनी होती थी, चल चल के पैसे बचाए जाते थे, रिक्शे के कैसे शेयरिंग में कभी किसी को धोखा देके भाग लेते थे।
3: कुणाल खेमू वो इंसान आज भी आपके पीछे भाग रहा है। व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: सलमानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और सच में आ, कुछ गाने आपके जहन को अकेला नहीं छोड़ते।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: और मिर्ची महफिल पर अब वक्त आ चला है कि ऐसे ही एक गाना मैं आपके नजर करूं, आपका ताशी आपके नजर करे। बिल्कुल। और आज का जो गाना है वो है सुरेश वाडेकर साहब का। और सुरेश वाडेकर साहब का वन ऑफ दो सॉन्ग्स जो कि उनका नाम लेते ही मेरे जहन में कौंधता है। पेशे खिदमत है सिर्फ मिर्ची महफिल पर

अब देखें, आज न जाने क्यों मेरे जहन में बॉलीवुड में जो हमारी गजलों ने बड़ा नाम किया वो चढ़ी हुई है, तो अगला ताशी अनप्लग्ड भी शायद आप कोई बॉलीवुड में बड़ी फेमस गजल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी आपके साथ, इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सो जो एक नया लड़का इंडस्ट्री में आता है बहुत ही नॉर्मल लुकिंग होता है एंड ही कम्पीट्स विद अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र एंड सो मेनी ऑफ देम. और फिर उसकी डेब्यू फिल्म को उसी साल मिल जाता है फिल्म फेयर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म. पुरानी जीन्स में आप और श्रेया के साथ, हेलो हेलो वेलकम. आज भी 1975 में रिलीज्ड एक बहुत ही कमाल की फिल्म, और मैं बात कर रही हूँ फिल्म रजनीगंधा की. कौन थे इसमें? इसमें थे अमोल पालेकर, हु एक्चुअली ही डेब्यूटेड फ्रॉम दिस फिल्म. एंड लोगों को बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, क्योंकि उस समय बच्चन साहब की फिल्म, धर्मेंद्र पाजी की फिल्म, सबकी फिल्में रिलीज हो रही थी, और अमोल पालेकर की फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल जाएगा. दैट वॉज नॉट अ सरप्राइज, बिकॉज ऑडियंस ने जाकर के हॉल में ना इस फिल्म को ऑलरेडी सुपर डुपर हिट कर दिया था. आज इसी फिल्म रजनीगंधा की बात होगी. श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं
1: बोल रहे
2: राज जी नमस्कार कैसे हैं आप
1: बढ़िया कौन सा बोल रहे हैं
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं हमारी एजेंसी अच्छा इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए
1: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए कहाँ पे लगाना
2: नहीं
1: है?
2: नहीं वही मैं जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं उसमें अब जाहिर सी बात है भाई आपका तो सिलेक्ट होना ही था दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा
1: तो
2: हाँ वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ पूरी नहीं नहीं पूरी मैगजीन तो नहीं है एक पेपर है बड़ा सा आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है नहीं आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ है ना ये
1: मुझे भी भेजना
2: राजी एक कॉपी नहीं आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स से उनको भी भेजूंगा
2: हाँ उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा अब थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो
1: हाँ बिल्कुल बताइए
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें राज में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ आप रेडियो मिर्ची में हैं मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया आपका अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप इसलिए
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट
5: अरे भाई गुस्सा मत कर इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM Mirchi 1 It's hot
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

शशि कपूर साहब ने रेकमेंड किया था कि ये जो फिल्म है ना, इसकी कहानी ऑलरेडी विनिंग कहानी है, लेकिन बासु जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की थी, तो ही सेड कि बासु ये तभी होगा अगर तुम एक न्यू कमर को, एक न्यू फेस को लेके आओगे। वेल, मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। इस फिल्म से डेब्यू किया था अमोल पालेकर ने, लेकिन बासु चैटर्जी हु एक्चुअली मेड द फिल्म, उन्होंने कभी भी इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स थे, जो मेन लीड थे, वो अमोल पालेकर के लिए नहीं लिखे थे, उन्होंने लिखे थे बच्चन साहब के लिए। और अगर बच्चन साहब रिफ्यूज कर देते तो ही हैड शशि कपूर इन माइंड। उन्होंने शशि कपूर को बैठा करके जब पूरी कहानी पढ़ी ना, तो शशि कपूर सेड कि ये एक विनिंग कहानी है, लेकिन हाँ, इसमें तुम्हें हम जैसे एस्टैब्लिश्ड एक्टर नहीं, एक न्यू कमर को लाना पड़ेगा। दैट वॉज हाउ इस फिल्म में अमोल पालेकर आए। और आपको पता है 1975 जिस ईयर में शोले रिलीज हुई, चुपके चुपके रिलीज हुई, उसी साल रजनीकंदा को मिला था फिल्म फेयर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
2: खट खट अगर कर
3: हूँ।
2: अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
3: खट खट हूँ दैट।
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

किसी ने नहीं सोचा था कि मुंबई के आकाशवाणी सिनेमा में रिलीज ये फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड ले जाएगी 1975 में। वो भी ये एक ऐसा साल था जिसमें हमने शोले की रिलीज देखी, चुपके चुपके की रिलीज देखी, बहुत सारी हिट फिल्में देखी, बट रजनीगंधा वॉज द वन दैट एक्चुअली वन एवरीवन्स हार्ट एज वेल। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। अब होता यह है कि डायरेक्टर बासु चैटर्जी एक न्यू कमर अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा को लेकर के आते हैं। उनको फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलते, फिल्म के लिए जब रिलीज हो जाती है तो हॉल नहीं मिलते, तो उन्हें थक हार करके मुंबई के आकाशवाणी सिनेमा में इस फिल्म को रिलीज करते हैं। फिर क्या, बाय वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज उस टाइम पे ना फेसबुक होता था, ना इंस्टाग्राम होता था, ना यूट्यूब होता था, ना ही केबल चैनल्स होते थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म तो ऑफकोर्स नहीं होते थे, सो बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म लोगों तक पहुंची और उसके बाद इट वॉज अ मैसिव हिट। तो सोचो, डिफरेंट हॉल्स में ना रिलीज हो करके भी अगर सिर्फ एक सिनेमा हॉल में रिलीज हो करके कोई फिल्म एक अच्छा काम कर सकती है, तो एक्चुअली में इट्स अ लेसन कि अगर कंटेंट अच्छा है तो लोगों तक पहुंचेगा और हिट होगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: सो अली खान, हमने सुना है कि सैफ एंड कुणाल बोथ आर ग्रेट कुक्स, आप क्या बना सकते हो?
4: थियोरी में तो मैं भी दाल चावल बना सकती हूँ, थियोरी में। कभी मतलब वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिला है, लाइक इट हैजंट गॉट दैट बैड कि मुझे किचन में जाने की जरूरत हुई है अब तक। कुणाल कुक्स वेरी वेल एंड भाई कैन मेक वेरी गुड स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड पास्ता।
3: दैट वाज सोहा अली खान ऑन बॉलीवुड बोल डाल। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

उस जमाने की बहुत फेमस बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस होती थी अपर्णा सेन. उन्होंने इस फिल्म के लिए इतने सारे पैसे मांग लिए और फिल्म के एक्टर को भी चेंज करने की डिमांड मांग ली कि इतनी बेहतरीन फिल्म से उनको अलविदा कह दिया गया. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म रजनीगंधा टुडे. 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई. फिल्म फेयर अवार्ड मिला इस फिल्म को इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म. और सोचो 1975 एक ऐसा साल था जिसमें शोले भी रिलीज हुई थी और बहुत सारी आइकॉनिक फिल्में रिलीज हुई थी. रजनीगंधा एक ऐसी फिल्म थी जिसे डेब्यू किया था अमोल पालेकर ने और विद्या सिन्हा ने. ये दोनों ही न्यू फेसेस थे. और शशि कपूर साहब ने ना मूवी के डायरेक्टर बासु चैटर्जी से कहा था कि तुम्हारी विनिंग स्टोरी है, तुम्हारी कहानी में बहुत दम है, इसको डेफिनेटली अवार्ड मिलेगा, लोगों को बहुत पसंद आएगी, बशर्ते तुम एक नया चेहरा लेकर के आओ. बासु चैटर्जी ने अपना हीरो अमोल पालेकर ढूंढ लिया था. फिर वो गए बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस अपर्णा सेन के पास. अपर्णा सेन ने कहा कि भाई मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए और मुझे ये अमोल पालेकर के साथ काम नहीं करना, एक एस्टैब्लिश एक्टर लेके आओ. बासु चैटर्जी ने उनको टाटा बाय बाय कह दिया. एंड देन केम विद्या सिन्हा. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ. रजनीगंधा के गाने भी है मेरे पास, एक एक करके सुनाऊंगी. सो कम राइट बैक.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: हम कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ ताल कहाँ सम कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ तेरे कर तुम ना लग रहे तुम तेरे कर तुम ना लग रहे तुम हम तुम नदाहत हिपाता लताफात पताफात मेरा कस करामत
1: ताते देता ताते देता थैया थैया थै तकतदुम तकतन्या
2: सपने में देखा सपना ओ सपने में देखा सपना।
3: ऋषिकेश दा की ना दो खास बात थी, एक तो वो लोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते थे अपनी फिल्मों में और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते थे। ये जो गाना आपने सुना इज़ फ्रॉम द फिल्म गोलमाल। आपको पता है ये फिल्म सुपर डुपर हिट थी जिसके सीक्वेंस अभी तक हम बनते देखते हैं। वेल, ये फिल्म 40 दिन में बन करके ख़त्म हो गई थी और वो भी उनके खुद के बंगलों पे बैंड्रा में। बिकॉज ही थॉट कि भाई लोकेशन से ज़्यादा वो ना स्क्रिप्ट में बिलीव करते थे। कहानी दमदार होनी चाहिए और कहानी आम आदमी की होनी चाहिए। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया के साथ चलते रहेंगे। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना
3: क्या बाना
2: मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
4: स्पीकिंग,
5: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को। मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में। यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
4: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
5: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके।
4: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
5: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था। तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे, तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
4: हेलो,
5: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मुझे लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: हेलो शॉप्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
7: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
6: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
8: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
6: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
9: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
10: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कान पकड़ करके शशि कपूर ऋषि कपूर को इस पिक्चर के सेट पे ले आए थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ये गाना है फ्रॉम द फिल्म कभी कभी। मूवी को बनाने वाले यश चोपड़ा साहब और यश साहब ने ये जो विकी का रोल था ना इस फिल्म में, ये ऋषि कपूर को सोच के ही बनाया था। अब ऋषि कपूर वाजंट वेरी एक्साइटेड टू डू दिस फिल्म, तो उन्होंने ना मना कर दिया था। जब ये बात यश जी ने शेयर की उनके अंकल शशि कपूर से, तो शशि कपूर ने कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऋषि को कौन पकड़ के सेट पे ले आऊंगा। हुआ भी यही। वो जबरदस्ती लेकर के आ गए ऋषि कपूर को। अब ऋषि जी ने कहा कि उनकी तो दो दिन के अंदर फ्लाइट है टू न्यूयॉर्क, जहां वो दो महीने के लिए छुट्टी मनाने जा रहे थे। तो आपको पता है क्या किया यश चोपड़ा जी ने, उन्होंने उनको डायरेक्टली सेट पे ले गए और ऋषि कपूर से डेढ़ दिन के अंदर हजारों शॉट ले लिए गए जो कि इस मूवी में यूज हुए फिर। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, उस जमाने की बातें चलती रहेंगी। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
2: खटखट
3: अकबर।
2: अरे अखबार बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
3: खटखट हो दैट।
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

किसी को भी दरवाजा नॉक करने तक की परमिशन नहीं थी। पुरानी जीन्स पे आबू श्रेया के साथ ये जो गाना आपने सुना, ये है फ्रॉम द फिल्म अमर प्रेम, जिसके गाने आज भी सुपर डुपर हिट हैं, और इनका म्यूजिक बनाने वाले आरडी बर्मन साहब। सो पंचम दा को जब इस फिल्म अमर प्रेम की ब्रीफ मिली तो उन्हें समझ में आया कि ये फिल्म सिर्फ एक एक नॉर्मल सी रोमांटिक स्टोरी नहीं है, इट्स एन इंटेंस रोमांटिक इमोशनल स्टोरी। तो इनके गानों के लिए, इसके म्यूजिक के लिए, कहते हैं कि पंचम दास सुबह 9 बजे अपने कमरे में, अपने म्यूजिक रूम में चले जाते थे, दरवाजा लॉक कर लेते थे, और बीच में जब उनको खाना खाना होता था, भूख लगती थी, तो कोई भी दरवाजा खटखटा नहीं सकता था। उनकी थाली उनके डोर के बाहर रख दी जाती थी कि जब जब उन्हें भूख लगेगी वो दरवाजा खोलेंगे और अपना खाना अंदर ले लेंगे। रात के 9 बजे तक ये काम होता था। He used to go inside at 9 a.m. and used to work till 9 p.m. locked in a room. और ऐसा कई दिनों तक चला जब तक इस फिल्म के म्यूजिक इतना खूबसूरत निकल के नहीं आया। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, वापस आओ।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: नेशनल अवार्ड विनर अजय देवगन, क्या आपको हमेशा से एक्टिंग करनी थी?
4: It was never acting. It was always, I used to make my own films. I was an assistant director. I used to edit. I used to direct. I was a cameraman. I used to do everything except for acting.
3: What can I say, Ajay Devgan? I'm just glad ki Phool aur Kaante happened. Aap sun rahe hain Mirchi, It's Hot.
1: Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal.
2: Only on Mirchi, It's Hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सनी देओल पे पिक्चराइज्ड है ये गाना, जो कि है फ्रॉम द फिल्म अर्जुन। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे राहुल रवेल, और इस फिल्म के डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी सब लिखने वाले थे वन एंड ओनली जावेद अख्तर साहब। लेकिन आपको पता है कि जावेद साहब को इस फिल्म का आइडिया कहाँ से आया? वो और राहुल रवेल एक्चुअली में पार्टी कर रहे थे, पार्टी नहीं, पिकनिक कर रहे थे लोनावला में, और वहां पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। जब जावेद साहब ने वो पढ़ना शुरू किया तो उस जमाने के मुंबई के एक गैंगस्टर की कहानी निकली थी। बस जावेद साहब को कंटेंट मिल गया और उन्होंने ये फिल्म बना दी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी फिल्म में सिर्फ मेल सिंगर्स थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म याराना। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फिल्म के सारे गाने जो हैं वो सिर्फ मेल प्लेबैक सिंगर्स ने गाए। एक गाना गाया था इस फिल्म का रफी साहब ने, और बाकी जो पांच गाने थे, बिकॉज देयर वर सिक्स सॉन्ग्स, वो किशोर दा ने गाए। ऐसा जनरली होता नहीं था तब, क्योंकि रोमांटिक गाने होते थे। लता जी का गाना तो डेफिनेटली फिल्मों में डाला जाता था, इफ नॉट लता जी तो आशा ताई का गाना होता था। एंड दोनों का मतलब डुएट गाने तो डेफिनेटली होते थे, बट याराना इस फिल्म में एक भी डुएट गाना नहीं था, एक भी फीमेल प्लेबैक सिंगर नहीं थी। पुरानी जीन्स पे कुछ ऐसे ही अनकही बातें जो आपने शायद कहीं नहीं पढ़ी, कहीं नहीं सुनी, वो ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ मैं। सो बस कहीं भी मत जाना, मेरा नाम है श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 89.6
2: 89.6 It's hot
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

राजेंद्र कुमार ने फिर कभी भी अपने सबसे खास दोस्त मनोज कुमार से बात नहीं की। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ये जो गाना भी आपने सुना, ये है फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी। एक ऐसी फिल्म जिसके रिलीज होने के बाद रातों रात बड़े स्टार बन गए थे कुमार गौरव एंड विजेता पंडित, दोनों के डेब्यू फिल्म थी ये। ये फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे राहुल रविल और इस पे पैसा यानी इसके प्रोड्यूसर थे कुमार गौरव के फादर राजेंद्र कुमार। अब हुआ ये कि राजेंद्र कुमार चाहते थे कि उनके बेटे की पहली फिल्म है और वो मनोज कुमार डायरेक्ट करें जो उनके बेहद करीबी दोस्त थे, लेकिन मनोज कुमार ने बहुत पोलाइटली उनको रिफ्यूज़ कर दिया ये कहते हुए कि अब उनका खुद का होम प्रोडक्शन है और वो अपनी फिल्म क्रांति में बिजी हैं। ये बात राजेंद्र कुमार को बेहद दिल पे चुभी क्योंकि मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म दिलवाने वाले राजेंद्र कुमार थे एंड हिज फर्स्ट फिल्म वॉज हरियाली और रास्ता। सो ही थॉट कि जब मैंने उनको तब पहली फिल्म दिलाई थी तो मेरे बेटे की पहली फिल्म डायरेक्ट करेंगे मनोज कुमार, विच ही डिड नॉट। और इसीलिए दोनों ने इस इंसिडेंट के बाद कभी एक दूसरे से बात नहीं करी। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
2: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पहले 1 लाख मांगे तो यश चोपड़ा साहब ना जोर से हंस दिए उनके मुंह पे, उसके बाद 3 लाख देने पड़े। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सलीम जावेद साहब की फिल्म जब उन्होंने लिखी जंजीर, बच्चन साहब के साथ जब रिलीज हुई तो सुपर डुपर मैसिव हिट हुई। अब ना सलीम जावेद साहब स्टैब्लिश हो गए थे एज फिनोमिनल राइटर्स कि ये दोनों जब कहानी लिखते हैं तो मूवी सुपर हिट हो जाती है। लेकिन अब जो मैं बात बता रही हूँ वो जंजीर फिल्म के रिलीज होने के पहले की है। स्क्रिप्ट का नाम यानी फिल्म का नाम होता है दीवार, और ये जो दीवार होती है ना इसको लेकर के पहुंचते हैं सलीम जावेद यश चोपड़ा के घर और उनसे कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट हमने आपके लिए बनाई है, ये सक्सेसफुल मूवी है, ब्लॉकबस्टर है, मेजर हिट है। तो भाई सलीम जावेद साहब ने इस स्क्रिप्ट के लिए 1 लाख रुपए मांगे। यश चोपड़ा साहब उनके मुंह पे हंस दिए और कहने लगे क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम दोनों, क्योंकि ये अमाउंट राइटर्स के लिए किसी ने कभी तब सुना ही नहीं था। सलीम जावेद साहब वापस आ गए, ये स्क्रिप्ट लेकर के वो किसी और के पास नहीं गए, अपने ड्रॉअर में रख दिया और जंजीर के रिलीज होने का वेट किया। जंजीर के रिलीज होते ही जो फैंडम देखा गया फॉर द फिल्म फॉर बच्चन साहब, उसके 2 दिन के बाद यही स्क्रिप्ट लेकर के सलीम जावेद पहुंचे फिर से यश चोपड़ा के पास और कहा इस बार 3 लाख फॉर दीवार। और यश साहब ने दिए भी 3 लाख रुपीज। वेल, इसी फिल्म दीवार का गाना कमिंग ऑलराइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: देखिए कौशल, आपको देख के लगता नहीं है आप किसी चीज से डरते होंगे, डर लगता है आपको?
4: पानी के अलावा सांपों से बड़ा डर लगता है, डर से ज्यादा रिपल्स हो जाता हूँ, मुझे एकदम झंझरी सी मच जाती है एकदम शरीर में। क्या
3: जैसे झंझरी बोला ऐसे मुझे अचानक से वो सेंसिटिव टूथपेस्ट से झंझनाहट। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM, मिर्ची वन,
11: इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे अभिषेक के साथ चले, जाने का टाइम हो गया है। सो लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट सिर्फ गाना नहीं है, जीवन की सच्चाई है, जो बस अगर लाइफ में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो ना, लाइफ इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी सिंपल। और वो क्या है?
1: छोटे से ही हम भी बड़े दिल वाले।
0: एब्सोल्युटली, जीवन के दिन छोटे ही सही, हम भी बड़े दिल वाले। लता जी के आवाज में गाना कमिंग ऑन राइट नेक्स्ट। मैं जाती हूँ, कल मिलने फिर से आती हूँ। इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी, फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव। दैट्स आरजे SHREYA विद लव। बाय।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हे, तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को दिल?

जा बुरा कर दे हाल, पलक फड़के हाय के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।